ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 प्रातः की 5:58 हुई है। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is एक सौ एक दशमलव 9 FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आप सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे समाचार हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन की शांति सबसे महंगा गहना है, उसे संभाल के रखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविद भारती से बोल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही मिनट में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 206।

बजकर 35 मिनट पर, 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। 7 बजे भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर है राजुल अशोक का। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक करण जोहर पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहत नामा, थायराइड की बीमारी और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर लीजा बनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है रामकरण मीणा की। 11 बजे सुनिए राम रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, बांसुरी वादक पारसनाथ से बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, माफ कीजिएगा 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता में श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशन है दीनानाथ। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: श्रोताओ, स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों पर चर्चा की जा रही है आजकल संगीत सरिता कार्यक्रम में। और श्रोताओ, आप तो जानते ही हैं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: नमस्कार श्रोताओं, पिछले कड़ियों में मैं आपको सुना रही थी कुछ कर्नाटक शैली के रागों के बारे में, जिनके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि कतन कुतूहलम, अमृत वर्षिनी और मंगलम, यानी कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती रागों के बारे में। तो आज से शुरू करते हुए मैं आपको एक ऐसे वाद्यकार और संगीतकार के बारे में परिचय देना चाहती हूँ, जो न केवल दक्षिण के केरला प्रांत में एक जाने माने महाराजा थे, बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभ दास वंची भोपाल श्री रामवर्म कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति तिरुनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन। इनके पिता राजराज वर्मा थे और माताजी का नाम था महारानी गौरी लक्ष्मीबाई। माँ का छोटी उम्र में ही देहांत होने के वजह से स्वाति तिरुनाल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वीं साल में स्वाति तिरुनाल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियां लिखी, बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियां सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इनमें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदि ताल, देशादि ताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाएं या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाएं, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ, जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि। यह कृति 16 मात्र के आदि ताल में निबद्ध।

0: चश्मे बद्दूर का ये गीत जो राग वृंदावनी सारंग पर आधारित था अभी आपने सुना। आवाजें थी हेमंती शुक्ला और येसुदास की। कल इसी क्रम में आपको सुनवाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रही हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधना फिल्म के इस गाने के साथ। गीता दत्त की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल एंड दत्ता का संगीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति परख फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, आपको अवगत करा दूं आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा से। सुबह के 7:30 से सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुर संगम 8:15 से प्रणाम अयोध्या, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:30 से। इसके अंतर्गत आज की बात का विषय होगा परहित सरस धर्म नहीं भाई। साथ ही सुनिएगा वार्ता मध्य पूर्व की अशांति का भारत पर वैश्विक प्रभाव। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सुचिता पांडे, प्राचार्य VNKV महाविद्यालय अंबेडकर नगर। नौ बजे से सुनिएगा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत 9:30 से हेलो अयोध्या। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा 10 बजे से। दोपहर 12:30 से होगा अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 1 बजे से कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और 2 बजे से गीतांजलि।

2:30 से सुनेंगे कार्यक्रम नारी जगत। कार्यक्रम में चर्चा सुनेंगे फैशन है जरूरी पर फुहड़ता से है बचना। साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता, हेयर ट्रांसप्लांट की मुख्य बातें। इस विषय पर डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अयोध्या से भेंट करेंगी वंदना सिंह। शाम 5 बजे से समय होगा कार्यक्रम युववाणी का। इसमें आज की चर्चा का विषय रहेगा ई सुश्रुत योजना और मिशन लाइफ पाने की वजह। भारतीय इतिहास से जानेंगे भारत में रेडियो और आकाशवाणी का सफर और होगा चक्रव्यूह। 5:30 से आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। 6:10 से शाम सुहानी। 6:30 से गूंजी स्वर गांव की।

0: किसान वाणी ये प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 6:45 से। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा होगी गृह वाटिका लगाएं, हरियाली बढ़ाएं। रात्रि 8:15 से सुनिएगा गीत गुंजन, 9:15 से महफिले गजल, हेलो अयोध्या 9:30 से, और 10 से होगा राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। इसका अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं, ये तो थी एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब से थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: भगवान से डरो, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की।

0: शहरों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएं। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी

0: अधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य

0: होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: प्रादेशिक समाचार के बाद एक बार पुनः आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं बाबला मेहता की स्वर में।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान।

0: रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
0: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: भक्त संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। अब से थोड़ी देर में होंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी।

0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार

0: रुपए की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप डी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु

0: भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रातः की 8:15 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
1: है उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, AYODHYAAKASHVANI@gmail.com।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुर संगम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में कुछ गजलें।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: और इसी के साथ अब कार्यक्रम सुर संगम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909।
3: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सविता, और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, सनातन संस्कृति और दुनिया के तमाम इतिहास में परोपकार को मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है, और गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई के माध्यम से भी धर्म की सबसे सरल और सटीक परिभाषा दी है। वो चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सीधे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरों की भलाई यानी कि परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जब हम परहित यानी कि दूसरों के हित की बात करते हैं, तो इसमें केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और साथ ही साथ पर्यावरण भी शामिल होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण आज भी पढ़ने को मिल जाएंगे जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग कर दिया। श्रोताओं, चौपाई का पहला भाग जहां परोपकारिता जैसे महान कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरा भाग यानी कि अगली पंक्ति हर एक को सचेत भी करती है कि दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। जब व्यक्ति के कर्मों से, विचारों से, शब्दों से अन्य किसी को भी दूसरे को ठेस पहुंचता है, कष्ट होता है, तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। श्रोताओं, आज की जो जीवन शैली है वो काफ़ी भाग दौड़ वाली और व्यस्तता भरी है। धीरे धीरे लोग अपने तक ही सीमित होते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे में परोपकारिता की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। थोड़ी परोपकारिता की भावना को अपने अंदर जरूर जिंदा रखना चाहिए। इंसान होने के नाते ये धर्म भी है और फर्ज भी है। यथासंभव एक दूसरे के सुख दुख को समझना चाहिए और दया सेवा भाव को अपने अंदर जीवित रखना चाहिए। तो अपने जीवन में थोड़ी सी जगह परोपकारिता को देकर खुद को और इस संसार को और भी सुंदर बनाएं।

0: और श्रोताओं कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है मध्य पूर्व की अशांति का भारत पर वैश्विक प्रभाव। इस विषय पर डॉक्टर सुचिता पांडे प्राचार्य वीएन केवी महाविद्यालय अंबेडकर नगर जानकारी दे रही हैं।
1: मध्य पूर्व एक ऐसे क्षेत्र के रूप में हमारे समक्ष आता है जिसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, लेकिन इसके आबादी वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और भू आकृतियां पाई जाती हैं। इसमें आमतौर पर दक्षिण पश्चिम एशिया, विशेष रूप से अरब प्रायद्वीप और सेवांत क्षेत्र शामिल हैं। इसमें टर्की, ईरान, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार मध्य पूर्व क्षेत्र में लगभग 17 देश शामिल हैं, जो अपने तेल भंडार और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मध्य पूर्व संकट मुख्य रूप से गाजा युद्ध के बाद इस क्षेत्र में इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान और अन्य संबद्ध समूहों के बीच चल रहे परस्पर संबंधित युद्धों, संघर्षों और गंभीर मानवीय संकटों की एक जटिल और अस्थिर श्रृंखला है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की जड़ें परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तथा मध्य पूर्व की राजनीति में निहित है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम

1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2002 में गुप्त परमाणु प्रतिष्ठानों के उजागर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौता किया, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करने पर सहमति दी। इसके बदले उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए, किंतु 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया और ईरान पर फिर से कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। इसके बाद फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट हमले तथा क्षेत्रीय संघर्षों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से शुरू हुआ यह संकट अब मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध का रूप ले चुका है। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद शुरू हुई सैन्य कार्रवाई ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को ध्रुवीकृत कर दिया और इजराइल हमास संघर्ष ईरान इजराइल टकराव में बदलने लगा। गाजा युद्ध के बाद लेबनान सीमा पर विवाद, लाल सागर में जहाजों पर हमले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा किया। अंततः 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ यह झड़प एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो गई। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के सैन्य टकराव ने क्षेत्रीय अस्थिरता को काफी अधिक बढ़ा दिया है। इसका व्यापक प्रभाव लेबनान, खाड़ी के तमाम देशों और प्रमुख समुद्री मार्गों पर पड़ रहा है। यूक्रेन ईरान के अलावा सूडान, म्यांमार व अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं, जो राज्य सत्ता के संकट को दर्शाते हैं। आज की दुनिया पूरी तरह आपस में जुड़ी हुई है। अब कोई भी देश अकेला नहीं है। किसी एक क्षेत्र में युद्ध, तनाव या आर्थिक संकट आता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। और अगर हम मध्य पूर्व की बात करें तो यह क्षेत्र केवल एक भौगोलिक हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा और रणनीतिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो मध्य पूर्व दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का क्षेत्र रहा है। मेसोपोटामिया, काबुल, फारस और मिस्र जैसी महान सभ्यताएं इसी क्षेत्र में विकसित हुई थी। यहीं से व्यापारिक मार्ग निकले, जिन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा। भारत और मध्य पूर्व के संबंध भी हजारों वर्ष पुराने हैं। प्राचीन भारतीय व्यापारी मसाले, रेशम, कपड़े और अन्य वस्तुएं लेकर अरब देशों तक जाते थे, फिर अरब देशों के माध्यम से भारत का व्यापार पश्चिमी दुनिया तक पहुंचा। लेकिन 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ गया, जब वहां विशाल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। धीरे धीरे पूरी दुनिया की औद्योगिक व्यवस्था तेल पर निर्भर होने लगी। आज भी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व पर आधारित है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश दुनिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों में शामिल हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों की, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों की नजर हमेशा एक क्षेत्र पर बनी रहती है। लेकिन जहां संसाधन और सामरिक महत्व होता है, वहां संघर्ष भी बढ़ते हैं। 1948 में इजराइल के गठन के बाद अरब इजराइल संघर्ष शुरू हुआ। फिर 1967 और 1973 के युद्ध हुए। 1973 का तेल संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। उस समय तेल उत्पादक देशों ने तेल की सप्लाई सीमित कर दी थी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। इसके बाद ईरान इराक युद्ध, खाड़ी युद्ध, सीरिया संकट, यमन संघर्ष और हाल के वर्षों में इजराइल हमास तथा ईरान इजराइल तनाव ने पूरे क्षेत्र को लगातार अस्थिर बनाए रखा है। आज स्थिति यह है कि मध्य पूर्व में होने वाली छोटी सी घटना भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर देती है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, शेयर बाजार प्रभावित होते हैं, वैश्विक व्यापार धीमा पड़ जाता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी आबादी 140 करोड़ से अधिक है। तेजी से बढ़ते उद्योग, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और वह

अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इस आयात का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत भारत के प्रमुख ऊर्जा साझीदार हैं। यही कारण है कि जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा को लेकर होती है। अगर युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता के कारण तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। जब तेल महंगा होता है तो इसका असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की बनावट देखें तो पता चलता है कि तेल और गैस सिर्फ दो वस्तुएं नहीं हैं, ये उत्पादन, परिवहन, खाद्य सुरक्षा और महंगाई के पूरे सिलसिले का आधार है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में लगी आग की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है और अंत में इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। रोजमर्रा की चीजें, दूध, सब्जियां, राशन, फल, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। यानी मध्य पूर्व का संकट भारत के आम परिवार की रसोई तक पर असर डाल सकता है। अगर कृषि की बात करें तो इसका प्रभाव यहाँ भी बहुत गहरा होता है। भारत की खेती अभी भी काफी हद तक डीजल आधारित मशीनों और सिंचाई पर निर्भर है। ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर और माल ढुलाई में ईंधन का प्रयोग होता है। अगर डीजल महंगा होता है तो खेती की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर बनाने में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। अगर गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो खाद भी महंगी हो जाती है। इससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है और बाद में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए खाद्य आपूर्ति को स्थिर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत लगातार कृषि सुधार, भंडारण क्षमता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रहा है। मध्य पूर्व संकट का एक और बड़ा प्रभाव वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों पर पड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। भारत के आयात निर्यात को भी इसने बहुत अधिक प्रभावित किया है। यही कारण है कि समुद्री सुरक्षा आज भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित बने रहें। मध्य पूर्व के देशों में लगभग 90 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देश में भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षक और मजदूर बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। ये भारतीय हर साल भारत में अरबों डॉलर भेजते हैं, इसे रेमिटेंस कहा जाता है। यह पैसा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के इसराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध है। इसराइल भारत को आधुनिक रक्षा तकनीकी, ड्रोन और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराता है। दूसरी तरफ भारत के अरब देशों और ईरान के साथ भी गहरे आर्थिक और ऊर्जा संबंध है। भारत संतुलन और संवाद की नीति के माध्यम से सदैव शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान की बात करता है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत किया है। ऊर्जा, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल भारत की वैश्विक सोच और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमें और अधिक ध्यान देना होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तेजी से विकसित करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी, सोलर सिंचाई और कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देना होगा ताकि वैश्विक तेल संकट का असर किसानों पर कम पड़े। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूत करना होगा ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। चौथा, भारत को अपने समुद्री व्यापारिक मार्गों और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना होगा। पांचवा, भारत को वैश्विक मंचों पर शांति और स्थिरता

0: मानवता की आवाज को और प्रभावशाली बनाना होगा। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है इस विचार पर विश्वास करता है। भारत का उद्देश्य केवल अपने हितों की रक्षा करना नहीं बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना भी है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर नीति मजबूत है, नेतृत्व दूरदर्शी है और जनता एकजुट है तो हर चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। भारत आज आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक सहयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, मध्य पूर्व की अशांति का भारत पर वैश्विक प्रभाव। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर सुचिता पांडे, प्राचार्य VNKV महाविद्यालय अंबेडकर नगर।
2: भरोसेमंद इलाज,
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
6: मुझे नौ लखा मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
7: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
6: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
7: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
8: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
8: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
9: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
10: सुनत हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
11: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
10: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
11: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
12: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
13: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आगे ये गीत जिसे हमने लिया है 20 साल बाद फिल्म से। मिली जुली आवाजें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से। गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं इनकी, जरा याद करो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के

0: बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून करके। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। बता दें श्रोताओं को कि दोपहर 1 बजे होंगे उपस्थित लेकर वो कार्यक्रम, जिसमें आपकी फेसबुक पेज पर हमारे जो कमेंट्स आते हैं उसमें आपकी फरमाइशें होती हैं उनको शामिल करने वाला प्रोग्राम कुछ तुमने कहा लेकर दोपहर 1 बजे। लेकिन 12:30 का वक्त होता है हमारी जड़ों से जुड़े हुए उस कार्यक्रम का जो हमारी पहचान है, हमारा लोक संगीत। नाम दिया हमने इसको लोक रंग। तो आइए सुनते हैं लोक रंग कार्यक्रम में कुछ लोकगीत। इन धुनों को पहचानते होंगे आप, बचपन से सुनते चले आए हैं। किसी भी शुभ अवसर पर हमने अपने घरों में लोकगीतों को खूब सुना है, खूब गुना है, दादी नानी काकी चाची भाभी के मुंह से। और ये लोकगीत हमारी परंपरा के संवाहक हैं, हमारे रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं, वो परिभाषा जिसमें माटी की सुगंध के साथ साथ अपनापन महकता है। तो बस आइए उसी अपनेपन के दौर में चलते हैं अपनी लोक धुनों के साथ लोक संगीत में।

0: हम तो चली नहीं हरवा बलम सिसकी लह लह रोवाएं। ये खूबसूरत सी मनुहार एक खूबसूरत सी शिकायत रिश्तों की उस नई परिभाषा को गढ़ती है जहां अपनापन लेता है खुशबू। उसकी महक में डूब जाइए क्योंकि शिकवे शिकायतें सिर्फ अपनों से होते हैं, गैरों से कौन करेगा। हाँ, ये शिकवे बड़ा रूप न लेने पाए इसका हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं बजाय आपकी शिकायतों के। क्योंकि शिकायतें तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगी लेकिन रिश्ते अगर खत्म हो गए तो उन्हें वापस कैसे लाएंगे। एक छोटा सा अंतराल लीजिए, हम तो वापस आएंगे ही आपके पास।
1: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
5: चले आए आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
5: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
0: रिश्ते हैं तो चटकेंगे भी, दरारें भी पड़ेंगी, लेकिन उन दरारों को चौड़े होने से रोकने की पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर होती है। संवादहीनता यानी कि बातों को ना करना, सच को ना बताना कहीं ना कहीं उन दरारों को और चौड़ा ही करता है। बातें कीजिए, अपने भीतर की गलतफहमियों को निपटाइए क्योंकि रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं और एक बार रिश्तों में खटास आ जाए तो उसे मिठास में बदलना मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश कीजिए रिश्तों में खटास आने ही ना पाए और ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हमें सोचना होगा।

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: लोकरंग कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। बाहर धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये नई बात क्या बता रहा हूँ हुजूर, ये तो आपको पता है। ढेर सारा पानी पी के चलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। मौसमी फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब खाते रहना चाहिए। और इन सबसे बड़ी बात कि सर पर अपने गमछा, टोपी और चेहरे को ढक कर निकलना बहुत जरूरी है। सूती वस्त्र पहनिए, पूरी बांह के पहनिए। मैं नई बात कोई सी बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता सकता हूँ। सत्तू पीजिए, सब कुछ आपको पता है, मगर आप करते क्यों नहीं है सर? थोड़ी सी लापरवाही सोचते हैं कि होगा क्या हमें? नहीं है सर, आप बहुत कीमती हैं। जानते हैं किसके लिए? अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, इस समाज के लिए, जहां आप कार्य करते हैं वहां के लिए, इस देश के लिए। यकीन मानिए, अपनी कीमत को पहचानिए और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। प्रकृति से लड़ना तो जरूरी नहीं, लेकिन बचाव जरूरी है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
3: नहीं अछूता हो जिस
2: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
4: इस तपती चिलचिलाती धूप में निकलना बहुत जरूरी है, काम करने जाना ही है, व्यापार हमें करना ही है, कैसे करें बचाव सब जानते हैं आप। पेट भर के पानी पीजिए, खाली पेट बिल्कुल ना निकलिए, मौसमी फलों का बहुत सेवन कीजिए, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज जो खा पाइए वो खाइए। सबसे बड़ी बात, सर को टोपी या गमछे से जरूर ढक कर चले, आंखों पर चश्मा लगा के चले, और जितना हो सके उतना सीधे धूप में काम करने से बचें। इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड करें, वो आप कर सकते हैं। दूध दही छाछ लस्सी जरूर पिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि ये प्रकृति है, ये सबके लिए समान व्यवहार करती है, ये बिल्कुल नहीं देखती आप लापरवाह हैं या फिर जिम्मेदार। इसलिए आपको हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा, आप बहुत कीमती हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और इस सृष्टि बनाने वाले ईश्वर के लिए भी आप बहुत कीमती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस गर्मी से बचाव कीजिए।

लोक रंग सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। ठीक 1 बजे होंगे उपस्थित लेकर हम कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। फेसबुक पर किए गए कमेंट्स के आधार पर हमारा ये प्रोग्राम होगा।

0: बड़ा नीक लागे गोरी तोहार कजरा। इस लोक गीत के साथ ही हमारा लोकरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। स्टूडियो की घड़ी बजाना चाहती है दोपहर के एक, और ये वक्त होता है हमारे उस प्रोग्राम का नाम है जिसका कुछ तुमने कहा। फेसबुक पेज पर जो आपने कमेंट्स के जरिए अपनी फरमाइशें भेजी हैं उसी आधार पर लेकर आते हैं हम अपना ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपके नाम और पते के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद के नगमे। तो अगर आप अपनी पसंद के नगमों को सुनने के लिए तो हम भी हैं तैयार पूरी तरह से आपके नाम और पते के साथ आपकी फरमाइश को आप तक पहुंचाने के लिए, मगर इन सब के बीच लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। उपस्थित होते हैं पहले गीत के साथ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: शुरू किया जाए? ओहो, ये तो शुरू हो गया भाई। हो क्यों ना, क्योंकि ये है ही कुछ तुमने कहा। अब किन्होंने कहा, उनके नाम तो आने हैं ना। गीत की धुन से समझ गए होंगे आप नगमा कौन सा गूंजने जा रहा है आपके एफएम पर, मगर नाम तो ले लो जिन्होंने की ये फरमाइश। बेरड़ी मध्य प्रदेश के हुकुम करम कर और सुनीता करमकर के साथ अब मैं नाम पढ़ता हूं एक एक करके। बाबा कुटीर रामगढ़ से शिव कुमार चौहान, ये आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा के। रति कुमार राहुल, रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल, ये है सैयद मसरूर, शाइना हसन और इब्राहिम ने भेजा है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। सुनील पाठक, कमल पाठक ने अनारकली, दीपिका गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयमाल यादव, आप सभी की फरमाइश हम पेश कर रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से बड़े ही नियमित श्रोता हमारे संजय ढींगिया साहब, अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी यानी ललिमा साहू, खुशान साहू, निशान साहू ने हमेशा की तरह करवादा छत्तीसगढ़, हमेशा मतलब वहीं रहते ही हैं इसलिए हमेशा कह दिया मैंने। ये हैं धनौरी तेलीवाल उत्तराखंड के निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी इनकी आलिया और अयान बाबू के साथ इन्होंने फरमाइश की है। मोताला महाराष्ट्र के विजय सुलौरकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। पुणे महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है बाबा राम वडोदे, पंकज आर्या, चंद्रप्रभा वडोदे का। इन्होंने लिखा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के, बहुत ज्यादा डिजाइन बना दी थी। महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और उनके बहुत सारे दोस्तों के नाम है। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा के राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, ये है फरमाइश। साहूनगर यवतमाल के राहुल मनवरकर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी के साथ दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। ये देखिए फरमाइश आई है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के लालगिरी गोस्वामी और हेमलता की, वारसी क्लब सिंधौली, मीरगंज बरेली के जीशान वारसी, इमरान शेख, अयूब खान, ये है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता। ये अगली फरमाइश है ताईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, रायपुर छत्तीसगढ़ के बड़े नियमित श्रोता विनोद, वीणा और विविधा वंडलकर, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, और इनके अलावा हयात कॉलोनी अरे

या बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा प्रवीण हिंदुस्तान रेडियो मित्र बना है बन्ने बुजुर्ग परीला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारादेवी विश्वकर्मा सोनाली और सोनम के साथ आशीष विश्वकर्मा का नाम लिखा है। इसमें उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर भानुप्रिया दिवाकर योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर ने पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भी भाटापारा छत्तीसगढ़ के बड़े नियमेश्वरा हिमवेश्वर साहू करण राहुल साहू और चंपा साहू आप सबकी आवाज में मुकेश की आवाज में हम भेज रहे हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गाना।

मुकेश की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। सुन रहे हैं कार्यक्रम आप कुछ तुमने कहा आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये तो म्यूजिक बज गई उस गाने की जो अब गूंजने जा रहा है आपके एफएम पर। भाई ये किस गाने की म्यूजिक है, गाना कौन सा है? अरे छोड़िए, किसने इस गाने के लिए कहा।

ये तो मैं आपको बताऊं, तो इस गाने के लिए फरमाइश जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा, कंवर कोहली बड़बाह खरगोन मध्य प्रदेश के प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली का है हमारे पास फरमाइश। पौड़ी गढ़वाल के उमा सिंह श्रीमती महेश्वरी देवी जी ने हमें फरमाइश की है। श्रोता है हमारे रघुवीर नगर के दिलावर खान हंसेना मानो एलिजा नायाब और लड्डू। ये देखिए साहब, संबलपुर कांकेर के फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश के विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई मालवीय, बंदेवी आकाश महेश्वरी विनायक, समस्त मालवीय परिवार। और ये देखिए आ गए राजधानी रायपुर के नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। बहुत सारी फरमाइशें हम सबके पास आती रहती है और हम सभी फरमाइशों को शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अयोध्या में हमारे अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के, कमाल बनाया इन्होंने अटल रेडियो श्रोता संघ आकाशवाणी अयोध्या लिखा था इन्होंने, नारायण लाल साहू, कुलवंतीन साहू, दिवेंद्र प्रताप नाहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय सुरुद्रांश और बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं। जुनवानी स्मित नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सुन्नी सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता देवी, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बहुत ही नियमित श्रोता है, बाजार रोड मुंगीसापुर के मोहम्मद जाकिर मंसूरी कालपी वाले, और ये है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के नियमित श्रोता हमारे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ के मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर के प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सतीश अनेजा, विमल अनेजा ने हमें ये चंडीगढ़ से फरमाइश भेजी। बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ के प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद के शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान ने फरमाइश भेजी है जिस गाने की उसे आवाजें दी हैं पूर्णिमा के साथ कुमार शानू ने। अंदाजा लगाना चाहेंगे क्या है? चलिए मैं गीतकार का नाम बताता हूं, समीर। संगीतकार का नाम बता दूं, आनंद मिलिंद। फिल्म का नाम कुली नंबर वन। लगा तो लिया अंदाजा अपने चेहरे पे आई मुस्कुराहट, क्योंकि मौसम के अनुकूल गाने की है फरमाइश और नियमित श्रोताओं के नाम पढ़ दिए मैंने इसमें। अब गाने को करते हैं इंजॉय। लबों पे आ गई है आपके मुस्कुराहट, क्योंकि प्रोग्राम है कुछ तुमने कहा।

0: अरे क्या अंकल, दरवाजे के बाहर रोड पर कूड़ा डाल रहे हैं आप? बगल में डस्टबिन है, उसमें भी तो डाल सकते हैं।
1: सॉरी बेटा सॉरी, गलती हो गई, अब से कूड़ादान में ही कूड़ा डालेंगे।
0: आप भी ध्यान दें, कचरा कूड़ेदान में ही डालें, अयोध्या को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली के गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले के साथ यशोक येले की फरमाइश भेज रहे हैं हम आपके FM पर, मगर कुछ और श्रोताओं के नाम के साथ। खेल बाजार पानीपत के नरेश मेहरोत्रा, नीटू लक्ष्य मेहरोत्रा, लाडो कोयल मेहरोत्रा, पापा जी नानक चंद मेहरोत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक के पीयूष सिक्का, कोलस सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविका सिक्का का ये है फरमाइश। फरमाइशों के इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं लाहौर डडा जिला बागपत के जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी करावल नगर दिल्ली के रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी धेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्नैल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के, और ये हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के PS नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल नवाकर। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड के जीवन विश्वकर्मा की फरमाइश है। फरमाइश आई हमारे पास ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंद शहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी के साथ अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब के सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके दोस्तों के नाम लिखे हैं। शास्त्री नगर बीड शहर के किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल की है फरमाइश। आप सब की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये दो गाना। रविंद्र जैन ने गीत को लिखा है, रविंद्र जैन का ही संगीत है, फिल्म का नाम फकीरा। गाने का अंदाजा लग गया। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से कही गई एक मोहब्बत की दास्तान, जहां सुंदर सुरीली बांसुरी बजती है पृष्ठ में।

कुछ तुमने कहा, फेसबुक पर आपकी फरमाइशों पर हम लेकर आते हैं वो नगमे जिन्हें सुनना चाहते हैं आप। और उसी कड़ी में अब आ गई है बारी हमारे अगले नगमे की, मगर बता दें श्रोताओं के नाम, भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार का है ये फरमाइश। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के, नाम ही नहीं लिखा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, मैं तो कभी गया नहीं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़। फिर लिखा है कालका से शुभचंद्र बजाज होगा वहां पे, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत।

संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके बहुत सारे दोस्त। ये फरमाइश आई है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान के बबलेश पवार, ढैनी पवार और मास्टर मनीष की। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। गांव मुरादनगर, जिला करनाल, हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूवेश कुमार कंबोज। गांव कलाना, राजस्थान के विक्रम कड़वासरा। गांव नंगलखेड़ा, फगवाड़ा, पंजाब के बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मोनी शर्मा, राहुल शर्मा ने हमें ये फरमाइश भेजी। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू और ये है दुर्गा कॉलोनी हांसी के नियमित श्रोता है राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप सबकी फरमाइश पर भेज रहे हैं हम कुमार शानू की आवाज में ये नगमा। के लिखे गीत को जतिन ललित ने दिया है संगीत, मिस्टर आशिक यह है फिल्म का नाम। समझ गए आप?

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आपके दिल की आवाज, आकाशवाणी अयोध्या।
2: तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
1: समसामयिक नगर गतिविधियों, सूचनाओं, हेल्थ से जुड़ी जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम अब सुनिए रोज सुबह 8:30 से आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम पूरी दुनिया में कहीं भी सुनिए प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए।
3: आधा सफर अभी बाकी है, जिंदगी को देखने का यही नजरिया होना चाहिए। कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में बात कर रहा है आज आपसे आपका अपना दोस्त हूं आपके साथ इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को करने में जो आनंद आता है उसको शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल। कोशिश करता हूं ढेर सारी बातें भी हो जाएं और आपके नाम के साथ आपकी फरमाइश के नगमे भी आ जाएं। तो मोहम्मद रफीक पंवार साहब ने ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हमें भेजा है बिंजीर कौसर, साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार के नाम के साथ। राजेश वर्मा ने हमको लाल कुर्ती रोड की कैंट से हमें ये फरमाइश भेजी। फरमाइश आई है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति का, चरौदा 12 नवापार बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार की फरमाइश। फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा के, छत्तीसगढ़ से ही फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन का, दतरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। बहुत ही नियमित श्रोताओं के हमारे ये जो खत आते हैं, ये जो फरमाइशें आती हैं, कमाल करती हैं। गाँव कलाना राजस्थान के विक्रम कड़वासरा, उज्जैन बोरखोड़ा के विनोद मूलत, नेहा जैन, दीपक मयंत मूलत, चेतन नाहटा, ये फरमाइश आई है पद्मा टाकी, नेपा नगर, मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सूरभ शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदारा, दिल्ली की तुलसी मिस्कीन ने हमें फरमाइश भेजी है। फरमाइश जिला नांदेड़ बोताला महाराष्ट्र के शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल की है फरमाइश। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना का है ये, और बदायूं गांव शंकरपुर पोस्ट उसावा से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव की फरमाइश। एक फरमाइश और ले लेता हूं, गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल।

प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और पूरे परिवार के सदस्य आप सबकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज का ये दो गाना। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम, फिल्म के नाम से ज्यादा तो इस गीत पे लोग मरते हैं। 1974 में रिलीज हुई थी वो फिल्म राजेश खन्ना की।

हर प्यार भरी नजर पे उम्मीद कायम मत करो, हो सकता है यूं प्यार से देखना फकत उसकी आदत हो। कुछ तुमने कहा और जब आपने कहा हमने सुना और आप तक पहुंचाया, इसलिए व्यग्र ना होइए, उतावले ना होइए, शिकायतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। तो वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता, क्रम से यदि आपका नाम आ गया तो अवश्य लिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं सभी की फरमाइशों को शामिल करने के लिए, लेकिन हमारी इस मेहनत पे थोड़ा सा तो गौर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव की फरमाइश हमारे पास है, और ये फरमाइश है डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल ने, गांव अरायन, जिला श्री गंगानगर से। अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के चंद्रमान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े, मंजू राजवाड़े, और ये देखिए सुरेश जायसवाल जी का जमनिया, जिला गाजीपुर से हमें इन्होंने फरमाइश भेजी है। उदयपुर राजस्थान के बाबू भाई, भारती देवी, रामेश नचानी, विनीत नचानी और मिथिला नचानी की फरमाइश आई है। गाँव भटनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर और भटिंडा रोड मंडी डबवाली के राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, पुराना शहर बरेली, कटरा, चांदखा, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11 के अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही और स्वाति का नाम लिखा है इन्होंने। किशनगंज बिहार के रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु बिराय, उत्तम कुमार बघेल ने रुखमनी बघेल और साहिल भारती बघेल के साथ लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है। फरमाइश तो ये आती है हमारे पास, पुरानी भिलाई 3 पटूम नगर चरोदा छत्तीसगढ़ के डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार की तरफ से। वडिंग खेड़ा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की फरमाइश है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान के रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय, हिमाक्ष का है नाम, ये नाम आया है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर के अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर के साथ। मलियान सरधना मेरठ के अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन की फरमाइश। फरमाइश आई है ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा का। आप सभी की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं ये नगमा किशोर कुमार और एंटो पिंटो की आवाज में। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, और ये वो गीत है जो बजते ही गुनगुनाने लगता है हर शख्स खुद ब खुद, क्योंकि ये शायद गीत नहीं दिलों की आवाज है। न जाने कितने दिलों ने कितनी बार गुनगुनाया होगा, जब भी रेडियो सेट पर सुना, कहीं गाड़ी पे चलते हुए सुना, तो बस बेसाख्ता दिल की भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए गुनगुना ही उठते हैं ये गीत। मैं गुनगुना रहा हूँ स्टूडियो में, आप सुनते हुए गुनगुनाइए ये नगमा, फिल्म सत्ते पे सत्ता, किशोर कुमार की आवाज, गुलशन बावरा का गीत, आर डी बर्मन का संगीत।

कुछ तुमने कहा भाई, किसने क्या कहा ये तो बताना बनता है फर्ज, क्योंकि अगला गाना तो आएगा एफएम पर तभी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा का ये फरमाइश है। गुजरात गांधीग्राम के प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी जी ने हमें की है फरमाइश। हमें फरमाइश की है अंडारनांद घाट छत्तीसगढ़ के माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा ने। नई बस्ती गंज डुंडवारा के मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ और तैमूर के साथ कलीम का नाम है। कस्बा उधौली बदायूं के देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। गंज डुंडवारा से ही मोहम्मद कलीम अंसारी, जहिरा बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी। लोहारू हरियाणा के बिल्लू सिंह चिंडालिया ने हमें फरमाइश भेजी है। ग्राम लसुड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश के गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका की फरमाइश है। ये फरमाइश है रावर करनाल के विनोद लखनपाल ने। और इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के चंद्रका, सीमा साहू, सूर्यकांत, रमेश साहू, शुभम, शिखा और शेफाली ने धन्यवाद, इन्होंने बहुत पहले ही दे दिया। दीवाना रेडियो श्रोता संघ बना बहलोलपुर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। और प्रेम सिंह बड़वाल का है ये हमें फरमाइश। मालवा रेडियो श्रोता संघ बना ग्राम गुलाब लोद, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश के कुंवर कृपाल सिंह का ये है फरमाइश। आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, पवेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा का। लगातार फरमाइशों के इस दौर में हम पहुंचे हैं उस मोड़ पर जहां सनावा से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना का हमारा ये फरमाइश आई है। और ये फरमाइश है बांदा यूपी के फहीम मंसूरी, साथ में फातिमा मंसूरी, गांव देवाड़, तहसील पूर्णा, महाराष्ट्र के सदाशिव धोराट, कविता थोरात, श्रेया और बंटी, बक्सर बिहार के शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, गाँव बांडी वाला फजिलका, पंजाब के ओम बगाड़िया, गुरमीत सिंह मीता ने साउथ दिल्ली से हमें भेजी है ये फरमाइश। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा, पूमनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मदरसा गेट भावपुर मणियाऊ, जौनपुर के इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद और अजरा तबस्सुम, रायपुर अनोई जिला बनारस के मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। ये है फरमाइश डबकी रोड अकोला के सुशीला देवी, मंदूरकर, सदानंद कुमार, गौरव आरव और अर्पिता की फरमाइश। फरमाइशों किसी मोड़ पे चलते हैं। गांव जाखो, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, मुरादाबाद गांव महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश के तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश और ये है बस स्टैंड मनसा पंजाब के जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा और इनके दोस्त गांव नथाना पंजाब के हरजिंदर छिंदा, जसवीर सिंह जस्सी, सीता और गीता। सेव आफ्टर सेव लाइफ, वाह, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश के मास्टर बिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश, अमन अफरीदी। लगातार फरमाइशों के इस क्रम में ग्राम लोहे डी, जिला महोबा बुलंद, बुंदेलखंड यूपी के जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव और राघवेंद्र और अरविंद ने हमें फरमाइश भेजी। फरमाइश आई है ये गांधीनगर गुजरात के जीके परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष का। वक्रट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे ने। सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से हमें

फरमाइश भेजी है, फरमाइश जयंत पटेल जी को भेज दी है किसने, अखोला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बेबता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ने, सत्यम सिंह सुंदरम सब यही थे, मुजफ्फरपुर बिहार के राजू कुमार, बिट्टू कुमारी, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी का ये नाम है, ये नाम है कृष्णा पार्क दिल्ली के सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी के पिंटू दीवाना का, भरत मक्कड़, कमल सानी, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, संदीप मक्कड़ ने हमें भेजा है पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, और ये फरमाइश है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र के, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रतेश संघई और पूरा संघई परिवार, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र के लक्ष्मण राव, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के रिजवान खान, सायशा समीन, अनस और रेहान, ये फरमाइश आ गई हमारी नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा के अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डाकर और इनके पूरे परिवार का नाम लिखा है यहाँ पर, पाकुल झारखंड से आए, उत्तम कौर भगत, श्वेता भगत और साथी, बोशलागाछी, बोहड़ागाछी, पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, तो बहुत सारे श्रोताओं के नाम है, टोरवाल, नवा नगर पंजाब के गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम का नाम है, ये नाम है भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा के बिजेंद्र कुमार जयकान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयराम का, आप सभी की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं ये नगमा, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज, साजिद वाजिद का संगीत, प्रसून जोशी ने लिखा गीत, फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी,

भाई ये जमाना भी तो देखे जरा कि नजरे ना छुपा। कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में रहा आज आपका अपना ये दोस्त, मगर 2 बजे गीतांजलि कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी नगवे लेकर होंगे उपस्थित। बहुत सारे श्रोताओं के नाम पढ़े, कुछ के नाम रह गए, उनसे मुआफी। अगले कार्यक्रम में उनका नाम जरूर शामिल करेंगे। आकाशवाणी अयोध्या को अपना ये प्रेम ये स्नेह देते रहिए। और प्लीज प्लीज प्लीज, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, शिकायतें जायज हो तो कीजिए, थोड़ा विलम्ब हो तो समझ लेना, गर्मी बहुत है। 2 बजने वाले हैं, हम सुनेंगे।

0: से मेरे
1: कुछ तुमने कहा। श्रोता सुन रहे थे फेसबुक पर भेजे गए अपनी फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। दोपहर के 2 बजे हैं, गीतांजलि ये कार्यक्रम का नाम है, जहां आप सुनते हैं गैर फिल्मी गीत। संगीत के इन धुनों के साथ आ गए हम लेकर गीतांजलि। जिंदगी खूबसूरत इसके हर लम्हे का है स्वाद, उस स्वाद को लेते रहिए, कड़वाहट को भूलते जाइए, मिठास को बढ़ाते रहिए। जिंदगी हमसे यही करती है उम्मीद।

0: तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: इस गर्मी में रखिए अपना और अपनों का ख्याल, देसी चीजों का कीजिए सेवन, धूप से बचिए और पानी ढेर सारा पीजिए।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल।

0: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90442070।
3: जिंदगी से सांसें लेने का नाम नहीं है कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, दुख हमेशा आपके जीवन में आते रहते हैं। जो इस जीवन में मिला है

एक दिन चला जाना है, इस बात से सोचे बगैर जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं और खिलखिलाते हुए सामना कर सकते हैं जिंदगी का। जिंदगी खूबसूरत है, हंसते मुस्कुराते चलते रहिए, क्योंकि जिंदगी आपसे और आप जिंदगी से यही उम्मीद करते हैं। क्या कहते हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत आसान है, दुखी रहने में बहुत मुश्किलें हैं, और लोग कठिन काम ज्यादा करना पसंद करते हैं, इसीलिए तो शायद दुखी रहते हैं। हमारे साथ रहिए मस्त मस्ती में, मुस्कुराते खिलखिलाते हंसते और गाते रहिए, कहते रहिए।

सौम्य राव के गए इस गीत के साथ ही हमारा गीतांजलि कार्यक्रम संपन्न होता है। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने वाले हैं और कुछ ही पलों में हम करेंगे अनुप्रसारित आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार, दोपहर समाचार। समाचारों की कीजिए प्रतीक्षा और ठीक 2:30 पर हो जाएंगे हम उपस्थित लेकर महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम। लेकिन फिलहाल तो अभी समय है समाचारों के अनुप्रसारण का। समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय

0: बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 27वें में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे तभी

0: जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो
2: पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आए आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी।

0: लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: सभी श्रोता बहनों को मंजू का नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी बहनें? आशा है स्वस्थ होंगी और मस्त भी होंगी। बहनों, गर्मी तो अपने चरम पर है, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि हमारी बहनें इस मौसम की मार से स्वयं भी बच रही होंगी और अपने परिवार को भी बचा कर रखेंगी। बहनों, समय के साथ चलना हम सब की आवश्यकता है, पर बहनों इस आधुनिक समय और वर्तमान जीवन शैली को अपनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमें अपनी मर्यादा व्यवहार कुशलता को बनाए रखना। बहनों, हमें आधुनिकता को उतना ही अपनाना चाहिए जितने में हमारी गरिमा बनी रहे। आज हमारे समाज में फैशन के विभिन्न मापदंड हैं, चाहे हमारे सजने सवरने के तौर तरीके हों या पहनावे उढ़ावे के रंग ढंग। समाज हमें इसके लिए कभी बाध्य नहीं करता। हम सब स्वतंत्र होते हैं अपने तरीके से जीवन जीने के लिए। परन्तु ये हमारा अपना विचार है कि हम किस तरह से समाज में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और मैंने व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे बुरे कर्मों से होती है, न कि उसके पहनावे और फैशन के विभिन्न तरीकों से। और देखिए बहनों, इसका साक्ष्य हमारे इतिहास में देखने को मिलता है कि ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज से हटकर अपना जीवन जिया और अपने अच्छे कर्मों से इतिहास में अपनी जगह बनाई। बहनों, आज हमारे समाज में फैशन को एक जुनून के रूप में देखा जा रहा है। हर कोई फैशन के नए नए आयाम अपनाकर स्वयं को औरों से बेहतर दिखना चाहता है, और इस स्थिति में वह यह भूल जाता है कि उसकी इस जीवन शैली से उसकी पहचान लोगों के बीच क्या बन रही है। बहनों, और इस दिशा में हमारा युवा वर्ग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए बहनों, सजना सवरना या स्वयं को औरों से अलग दिखाना बुरा नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जो जीवन शैली अपना रहे हैं उससे हमारी पहचान कहीं धूमिल तो नहीं हो रही। बहनों, हर कोई अपने तरीके से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। हम क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इससे समाज को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। पर बहनों, हमें अपने जीवन में हर चीज की सीमा का निर्धारण स्वयं ही करना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं का आत्मविश्वास बना रहे और हमारी छवि फुहरता की छवि ना बने। और देखिए बहनों, इस दिशा में हम सभी को सजग रहने की जरूरत है। बहनों, आज सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि फैशन जरूरी है, पर उसकी भी एक सीमा निर्धारित है। क्योंकि बहनों, हर अच्छे बुरे कार्य की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। इसलिए बहनों, आज की युवा पीढ़ी को यह अवश्य बताने की आवश्यकता है कि फैशन उतना ही करें जितने में हमारी गरिमा बनी रहे। और देखिए बहनों, सुंदर दिखना हर व्यक्ति की चाहत होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। और बहनों, सुंदरता के लिए जरूरी है हमारा अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली, तभी हमारे शरीर की सुंदरता बनी रहेगी। बहनों, सुंदरता में चार चांद लगाते हैं हमारे सिर के बाल। जब ये सुंदर घने लंबे होते हैं तो एक स्त्री की सुंदरता और बढ़ जाती है। लेकिन बहनों, आजकल हमारा खान पान, पर्यावरण की मार, तनाव या विषम परिस्थिति में हमारे बाल भी प्रभावित होते हैं। कभी कभी हम ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कि हमारे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है, जो हमारे जीवन में निराशा लाने का काम करता है। पर बहनों, विज्ञान में चमत्कार है। विज्ञान ने हर समस्या का समाधान निकाल दिया है और गंजेपन की उदासीनता को भी दूर कर दिया है हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा। लेकिन बहनों, जानकारी के अभाव में या आधी अधूरी जानकारी हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करती है।

0: या कोई नई समस्या हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है। तो बहनों, आज हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित विषय पर जानकारी देने के लिए हम अपने कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता लेकर आए हैं, जिसका विषय है हेयर ट्रांसप्लांट की मुख्य बातें। जानकारी दे रही हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव जी, और इनसे बातचीत कर रही हैं वंदना जी।
1: खूबसूरती और आत्मविश्वास का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और तनाव के कारण बालों का झड़ना या गंजापन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बाल झड़ने लगते हैं तो लोग परेशान होने लगते हैं, और आजकल इसी समस्या के समाधान के रूप में हेयर ट्रांसप्लांट का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन इसको लेकर कई सवाल, गलतफहमियों के सवाल हमारे मन में उठते हैं। इसी से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पल्लवी श्रीवास्तव जी को, जो कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी देंगी। पल्लवी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है।
2: हेयर ट्रांसप्लांट एक बाल प्रत्यारोपण की एक प्रक्रिया है
1: जी,
2: जिसमें उन जगहों से हेयर फॉलिकल्स लिए जाते हैं जो कि बाल से, मतलब डेंसिटी उनकी अच्छी है, जो झड़ने से वंचित रह गए हैं, जो बचे हुए हैं, उस जगह से हेयर फॉलिकल्स ट्रांसप्लांट करके उन जगहों पे लगाए जाते हैं जहां बाल कम हो गए हैं
1: जी। ये हेयर फॉल होता क्यों है, इसके कारण के बारे में आप कुछ बताइए।
2: हेयर फॉल पुरुषों में और महिलाओं में अक्सर सबसे कॉमन कॉज जो है वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि नाम से ही समझ में आता है, एक तो जेनेटिक है जो माँ बाप से या अपने एंसेस्टर्स से मिलता है, और हार्मोनल प्रक्रिया के वजह से, इन्फ्लुएंस के वजह से हेयर फॉल होना, उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, जो कि सबसे आम बात है हेयर फॉल का
1: जी।
2: दूसरा कारण जो अक्सर देखा जाता है उसे कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम, उसमें जैसे कि कोई आपके फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से कुछ समय के बाद हेयर फॉल होना, उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के बाद, उसके बाद कोई बीमारी, लंबी बीमारी के बाद।
1: चाइल्ड बर्थ के बाद तो अक्सर होता है कि हेयर फॉल बहुत तेजी से होने लगता है महिलाओं में
2: जी, जब प्रेगनेंसी रहती है तो हार्मोनल का उतार चढ़ाव नहीं रहता है, हार्मोन अपने सबसे ऑप्टिमम लेवल्स पे रहते हैं जिसके वजह से हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। तो सब देखते होंगे प्रेगनेंसी में बाल अच्छे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो वही हार्मोन्स कम लेवल पे आ जाते हैं, तो जो सपोर्ट वो कर रहे थे हेयर को वो अब हट जाता है, तो उसके 3-4 महीने बाद, डिलीवरी के 3-4 महीने बाद फिर बाल झड़ना शुरू करते हैं, जो कि आम बात।
1: किन पेशेंट को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में आप बताइए।
2: हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में किया जाता है, जिनमें ग्रेड 3 या ग्रेड 4 से ऊपर उनका हेयर लॉस हो गया। जैसे पुरुषों में अक्सर देखा जाता है कि आगे की जो उनकी जो बालों की रेखा है वो पीछे चली गई, उस फ्रंट लाइन हेयर रिसेशन कहते हैं
1: जी।
2: जब वो पीछे चले जाते हैं, आगे के बाल अगर बहुत ज्यादा गंजापन दिख रहा है, तब महिलाओं में अक्सर सेंट्रल हेयर थिनिंग होती है, उनकी मांग चौड़ी हो जाती है बीच वाली, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा बाल कम हो गए तब उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दूसरा, उन केसेस में जैसे कि जहां पे बाल आने की कोई उम्मीद नहीं है, जहां जड़ नष्ट हो गए हैं, वहां पे बाल का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इस तरह की कई सारी बीमारियां चोट लगने की वजह से अक्सर वहां पे कई बार बाल चले जाते हैं जी, और अक्सर कुछ बीमारियों की वजह से जैसे डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसस, जैसे कुछ इन्फेक्शन की वजह से स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है, जहां पे उनका जड़ नष्ट हो जाते, तो वहां भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
1: पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई, और इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेयर ग्रोथ कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
2: जैसे कि आम भाषा में बताया जाए तो हेयर साइकिल होता है, जैसे कि हर किसी के लाइफ स्टेज होते हैं, वैसे ही बालों का भी लाइफ स्टेज होता है
1: जी।
2: उसमें 3 स्टेजेस से बाल को गुजरना पड़ता है। सबसे पहला होता है एनाजन फेज। एनाजन फेज जो होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक रहता है, और यही ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि आपके बाल कितने लंबे होंगे, क्योंकि ये एक्टिवली ग्रोइंग फेज रहता है, इसमें लंबाई और मोटाई बढ़ती है बालों की। दूसरा फेज होता है आपका कैटाजन फेज। कैटाजन फेज जैसे रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं बाल, जो कि होता है 3 हफ्ते लगभग, 2 से 3 हफ्ते, उसमें बालों का नीचे जड़ से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, नष्ट होने की प्रक्रिया तब शुरू होती है, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, नष्ट होते होते नीचे से नष्ट होने लगते हैं, 3 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद आता है टेलोजन फेज। टेलोजन जो है उस उसमें होता है कि ये जो नष्ट होने की प्रक्रिया पूरी समापन की तरफ है, लेकिन

0: रहता है लगभग 3 महीने के लिए, जिसे वृद्ध बाल कह सकते हैं इनको, टेलोजेन को। तो उसके बाद फिर ये झड़ते हैं। तो ये होता है एनोजेन, कैटेजेन और टेलोजेन। तो अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग स्टेजेस की जो लाइफ साइकिल को जब अफेक्ट करता है उस हिसाब से बाल झड़ते हैं आपके
1: जी।
0: तो जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें आपके टेलोजेन वाले बाल ज्यादा झड़ेंगे, और उसके बाद फिर जैसे टेलोजेन एफ्लूवियम, जैसा मैंने बताया कि सी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस के बाद जब झड़ते हैं, उसमें जो एनाजेन वाली फेज है जो कि नॉर्मली 2 से 6 साल रहनी चाहिए थी, वो छोटी हो जाती है, मतलब
1: कम हो जाती है,
0: जल्दी वो वृद्धावस्था की तरफ चलने लगते हैं और जल्दी झड़ते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं।
1: पल्लवी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट जो इसकी बात हम कर रहे हैं, इसको करवाने से पहले मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो मरीज को किसी एक डॉक्टर के पास जो इसको कर रहे हैं उनसे ये सलाह ले लेनी चाहिए थी क्या वो इसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं कि नहीं, उनका हेयर लॉस कितना हुआ है, क्या उनको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। दूसरा, उनका जो डोनर एरिया जहां से बाल लिए जाएंगे उसमें डेंसिटी बालों की कितनी है, अगर वो कम है तो हेयर ट्रांसप्लांट ठीक से नहीं हो पाएगा, उतने बाल वो नहीं प्रत्यारोपण कर पाएंगे। दूसरा, उनको कोई एक्टिवली, जैसे मैंने बताया कि स्कारिंग एलोपेशिया होता है, स्कारिंग एलोपेशिया में जब कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी रहती है जिसकी वजह से आपके जड़ नष्ट हो रहे हैं
1: जी,
0: अगर वो एक्टिव फेज में है तो भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, नहीं तो फिर जो बाल प्रत्यारोपित किए जाएंगे वो भी नष्ट होने की संभावना रहेगी
1: जी।
0: और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक एंड्रोजेनेटिक प्रोसेस है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा, जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी हमेशा रहेगा, तो आगे भी बाल झड़ने की संभावना रहती है, तो उसके साथ उनको मेडिकल थेरेपी भी लेनी पड़ती है ताकि वो जो बाल झड़ने की प्रक्रिया को रोक सकें। हेयर ट्रांसप्लांट बाल ला सकता है लेकिन उसको बनाए रखना और उसको झड़ने से रोकने के लिए भी आगे दवा की आवश्यकता।
1: अच्छा, क्या ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी बाल झड़ सकते हैं?
0: एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में झड़ते हैं लेकिन उसको दवाई से या और किसी तरह से रोका जाता है, स्लो डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि बाल तो अमर तो नहीं है, वो झड़ेंगे जरूर
1: जी।
0: उसकी स्पीड को स्लो किया जाता है, साथ ही साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि उसका शुगर लेवल कितना है।
1: अच्छा।
0: उसको कोई ब्लीडिंग एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, उसको कोई और दवा तो नहीं चल रही जिसके वजह से भी हेयर फॉल हो रहा हो, या जब हम लोग सर्जरी करें तब उसको ब्लड थिनर्स तो ऐसे कोई नहीं चल रहा, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ऐसी कोई दवा तो नहीं चल रही जिससे ब्लीडिंग की संभावना ज्यादा हो सकती है, ये सब बातों का उसको ध्यान रखें।
1: हेयर ट्रांसप्लांट की जैसे तकनीक के बारे में बताइए कि ये कैसे होता है, इसे कैसे किया जाता है?
0: जी, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है 2 तरह से किया जाता है, एक तो होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, एक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। पेशेंट को सबसे पहले शेव किया जाता है, डोनर एरिया को भी और रेसिपिएंट एरिया को भी, क्योंकि बाल पूरे लंबे लंबे तो नहीं रोपे जाएंगे या निकाले जाएंगे, तो पूरा शेव किया जाता है कि उसके जड़ लिया जा सके, फॉलिकुलर यूनिट्स लिए जा सके। फॉलिकुलर यूनिट में 1 से लेके 3 से लेके 4 बाल हो सकते हैं एक साथ, गुच्छे भी रह सकते हैं, एक सिंगल बाल भी रह सकता है, ठीक है, उसको एक फॉलिकुलर यूनिट कहते हैं
1: जी,
0: डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद शेव करने के बाद उस एरिया को क्लीन कर लिया जाता है, अच्छे से स्टराइल कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें एनेस्थीजिया दिया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीजिया में होता है, जिसमें एनेस्थीजिया जो होता है ट्यूमिसेंट एनेस्थीजिया कहते हैं, जिसे डाइल्यूट करके ताकि वो एरिया ज्यादा कवर भी हो जाए, और उसके साथ एपिनेफ्रिन भी दिया जाता है ताकि वो ब्लीडिंग कम करे,
1: ब्लीडिंग।
0: उसके बाद फिर उसमें मोटराइज्ड पंचेस होते हैं, पहले मैनुअल पंचेस भी होते हैं, जैसे आपने बुक पंच देखा होगा, जैसे बुक पंच किया जाता है उसी तरह बहुत महीन पंच होते हैं, मतलब 1.25 mm जितने पंचेस भी होते हैं, जो सबसे मोटा पंच है वो 1.25 mm का है। उस पंच से पंच कर करके एक एक फॉलिकुलर यूनिट निकाला जाता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया 2 तकनीक है, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें एक स्ट्रिप पूरी स्किन की डोनर एरिया के ऊपर काट के अलग की जाती है, फिर माइक्रोस्कोप में देख के उसको बारीक बारीक हिस्सों में काट के एक एक यूनिट को सेपरेट किया जाता है, उसको नॉर्मल सलाइन में रख दिया जाता है ताकि वो ड्राई ना हो। उसके बाद जो रेसिपिएंट एरिया है उसमें छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, जैसे बीज भरने के लिए
1: जी जी,
0: तो उसको रोपण करने के लिए वहां छिद्र बनाए जाते हैं। फिर एक ज्वेल्स फोर्सेप होता है, बहुत महीन सा फोर्सेप होता है, चिमटी जिसको बोलेंगे आम भाषा में, उससे उठा उठा के उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें एक चमड़ी का पूरा, उसके बाद वो जो चमड़ी जहां से निकाली थी उसको स्टिच कर दिया जाता है,
1: वही
0: तो वहां टाका लगने की वजह से थोड़े ऊपर के बाल से वो ढका रहता है
1: जी,
0: जब बाल उगाते हैं तो वो स्कार दिखता नहीं है। फिर बाद में दूसरा तकनीक जो होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो आजकल काफी पॉपुलर है, थोड़ा ईजी है नए डॉक्टर्स को सीखने में।

तो बहनों, एक सही जानकारी हमें भ्रमित होने से बचाती है और हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखती है। और बहनों, अब बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहनों, लेते हैं इस गीत का आनंद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: सुनिए,
5: कहिए, कहिए,
4: सुनिए।
6: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाश

0: आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: मैंने इस भीषण गर्मी में धूप से त्वचा को बचाने के लिए जब भी हम बाहर निकलें तो सूती वस्त्र अवश्य पहनें और त्वचा को ढक कर रखें। त्वचा पर सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें या एलोवेरा जल लगा कर निकलें। और बहनों, बाहर निकलते समय चश्मे का प्रयोग करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, रसीले फलों का सेवन करें, पौष्टिक और संतुलित भोजन लें। बहनों, त्वचा को ठंडक और निखार देने के लिए संभव हो तो प्रतिदिन एलोवेरा जल, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगाएं। चेहरे की टैनिंग को हटाने के लिए खीरे का रस या टमाटर का रस कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। चेहरे को साफ रखने के लिए कम से कम दिन में दो बार हल्के फेस वॉश से चेहरे को धोएं। रात को सोने से पहले त्वचा पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि रात भर त्वचा को पोषण मिले। सप्ताह में एक दो बार घरेलू उपटन का भी प्रयोग करें, जिसमें बेसन, थोड़ी सी हल्दी और दही मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे और त्वचा पर लगाएं। 10-15 मिनट लगाए रखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। और देखिए बहनों, सबसे ज़्यादा जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखना, तो स्वस्थ रहें, नियमित दिनचर्या का पालन करें और इस गर्मी के मौसम में भी आप सुंदर दिखें। तो इसी के साथ बहनों, दीजिए अनुमति मंजू को। नमस्कार।

नारी जगत कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दोपहर के 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: हाँ, ये तो बात है
2: ना।
1: देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली।
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी है खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है, तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
1: मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: नागिनी मैम, देखिए नागिनी जी, क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना, ये हर घर में होती हैं।
1: जी,
2: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी, तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है, हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल,
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि आनंद भी आता है, और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना, तब भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने
1: को अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: कहने का मतलब है।

0: काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है.
1: बिल्कुल, ये तो है. अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है. अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के.
0: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे. वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी. तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं. तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए. और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल. ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे. और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजे.
1: हाँ, लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है. अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे. वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही.
0: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है.
1: हाँ, ऐसे जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया. तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है. हमारे अपने घर में ही कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं. कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ, आपको पापा ने एक और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो इसका मतलब.
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे. और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं.
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत.

0: कहना चाहिए थी खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
1: खत आ गए हैं,
0: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल। ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है?
0: आत्म सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
1: हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देखकर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा। वो आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल। कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम खुद सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही ते नर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है,
1: बिल्कुल है
0: ना?
1: है।
0: तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात। हाँ, है ना?
1: और तो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है।
0: बिल्कुल। चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं।

0: सॉरी हाँ।
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
0: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉपक्लूज की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉपक्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
0: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

सकोगे रह न सकोगे कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: वो कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे, तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है, तो कंघा और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कह

0: रहते थे तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती है, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जन्माष्टमी में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदर पूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: शादी विवाह की जान होते थे,
0: जान होते थे। सही बात,
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं। तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। ये स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे जुहलबाजी टाइप की भी होती थी, थोड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
0: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: होटल में हो गई हैं, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहाँ आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे गर्म पानी समझ के ही पी लो तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी।

0: होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं शादी में जन्मवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जन्मवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, हाँ। तो वो तो किसी और का बगीचा है।
0: हाँ हाँ।
1: अब आम लगे हैं,
0: हाँ।
1: अब बराती लगे तोड़ने में,
0: हाँ हाँ।
1: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जन्मवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया। हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज वापस यादें हो गई ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज ए फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है बांसुरी वादक
0: जी। बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी जिनका

0: ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्य
1: वृंद बनाना, वो भी और भी चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग, ये मायने रखता है।
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे
0: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारस नाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है। वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है।
0: हाँ।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी,
1: तो और भी बदमाश,
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मा रहे, बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मा रहे, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी से चुराए,
1: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
0: ओहो हो,
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉय स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: और जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो हॉस्पिटल।

0: से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं
1: कहीं और पहुंच गए
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या हाल होता।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड़ नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: He was a military guy.
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि रात भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा रे गा मा पा नी सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के।

0: जागो
1: वाह वाह वाह वाह
0: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना
1: बिल्कुल।

0: वो चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है.
1: बिल्कुल.
0: सो उस वक्त जगा दिया जाता था. दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी.
1: खतरनाक जी.
0: पर वो जगाते थे. फिर उसके बाद वो हो गया. फिर साढ़े पांच बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से. एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, व्हाटएवर. ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ.
1: जी जी.
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया. साढ़े सात आठ बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए. आठ बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके. उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे.
1: अरे गजब.

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है।
0: पूरी सारी रात जाग गए
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल तय है, पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: अनुशासन से,
0: रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है?
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल,
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है।
1: बिल्कुल,
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और

0: एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी,
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: इसको ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ।
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी,
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी, आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का,
1: हाँ, है, बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात,
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है,
1: हाँ
0: है ना
1: जी,
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी,
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: वो, बिल्कुल सही,
0: वो देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं,
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है।

अर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको

0: बांसुरी पकड़ा दी गई थी।
1: सर ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल पीने जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
0: जी,
1: तब का सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
0: हुली आई रे कन्हाई।
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
0: जी,
1: तो वैसा था। तो फिर ऐ दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
1: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
0: बिल्कुल।
1: ओहो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त के मूवीज से हम
0: जी,
1: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
0: अरे बाबा,
1: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
0: अच्छा।
1: बहुत शौक।
0: क्या बात है।
1: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर।
0: अरे वाह।

0: टीम यस।
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है,
0: था।
1: तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे हैं कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: हाँ, महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही
1: इशारा किया था
0: कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
0: स्टूडियो चलते हैं ना,
1: स्टूडियो चलते हैं,
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहां पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक।
1: हाँ,
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी। उसमें आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर के, हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी बातचीत में से। ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर में, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता है।

0: तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं है. वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो. और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ. तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था. फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए. तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं. तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली. एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का.
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो. कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है.
1: हाँ,
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए.
1: बिल्कुल.
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए.
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में तो उनकी वो एनर्जी और वो इंप्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी. तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा.
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था.
0: वही था.

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

न्यूज़ ऑन ARF और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: दिन भर की भाग दौड़ के बीच थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव लेकर आ गई है मजेदार संगीत और बातें। तो भाई कैसे

तो अरे बातें, तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, और बढ़िया हो भी क्यों ना, जब रखते हैं हम आपका इतना ख्याल ढेर सारी बातों और मनोरंजन के साथ। तो बिना किए देर हम जान लेते हैं कि क्या होगा आज आपके लिए कार्यक्रम में खास। तो आपको बता दें, हम करेंगे चर्चा ई सुश्रुत योजना और मिशन लाइफ योजना की। साथ ही आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो जोड़े रखे हैं लाखों दिलों को एक तार में। जी हाँ, भारतीय इतिहास से में हम आज चलेंगे भारत में रेडियो और आकाशवाणी के सफर पर। साथ ही अब करिए याद कि क्यों है खास आज का दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, आज है दिन मंगलवार, जब होती है आप पर सवालों की बौछार। तो रहिएगा तैयार कॉपी कलम के साथ सवालों को नोट करने के लिए सेगमेंट चक्रव्यूह में। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि होंगे गीत संगीत, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आपके आकाशवाणी का उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक पहुंचे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से चलते हैं अपने पहले सेगमेंट चर्चा की ओर, जिसमें हम जानेंगे ई सुश्रुत योजना के बारे में। दोस्तों इमेजिन करिए, अपने आसपास का कोई भी सरकारी अस्पताल, लंबी लंबी लाइनें, भीड़ से परेशान चेहरे और जल्दी इलाज मिल जाने की उम्मीद में भटकते लोग, फाइलें इधर उधर रखी हुई और मरीज के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढते ढूंढते परेशान स्टाफ। ऐसे में अगर अस्पतालों का काम पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाए तो लोगों को कितनी राहत मिल सकती है ना। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है ई सुश्रुत योजना। दोस्तों ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसका मकसद है सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में काम ज्यादा आसान और पहले से बेहतर बनाना। इसके जरिए मरीजों का रजिस्ट्रेशन, जांच रिपोर्ट और इलाज से जुड़ी जरूरी जानकारी कंप्यूटर में सुरक्षित रखी जाती है। आपको बता दें, इस योजना का नाम प्राचीन भारतीय वैद्य सुश्रुत के नाम पर रखा गया है, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता ये कदम आने वाले समय में लोगों को बेहतर सुविधाएं देगा और बहुत ही मददगार साबित होगा। साथ ही ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ई सुश्रुत योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल हेल्थ व्यवस्था है, इसे साल 2013-14 के दौरान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया था। ये योजना उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करती है। आज के समय में जब हर क्षेत्र डिजिटल हो रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सिस्टमैटिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में ई सुश्रुत योजना एक अहम कदम माना जाता है। उम्मीद है ये योजना आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब चलते हैं चर्चा के दूसरे विषय, मिशन लाइफ पानी की बचत की ओर। एक मिशन जो हमें सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ बड़ी नीतियों से नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से भी हो सकती है। आज जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, कहीं तेज गर्मी, कहीं बेमौसम बरसात, तो कहीं बढ़ता प्रदूषण, ऐसे में जरूरत है कि हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाएं। मिशन लाइफ का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, जैसे बिजली और पानी की बचत करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और प्रकृति के अनुकूल आदतें अपनाना। आपको बता दें, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अंतर्गत पानी की बचत अभियान प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था। इसके तहत खास जोर पानी की बचत पर दिया गया। आज लोग पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर फिल्टर से वेस्ट पानी नाली में बहा देते हैं, जबकि चाहें तो वही पानी कलेक्ट करके पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतें सुधार कर भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और वक्त है अब कि हम उसके लिए कुछ करें। तो पीछे नहीं हटना है, पर्यावरण को बचाने की शुरुआत अपने जीवन से करनी है, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होता है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब हम चल रहे हैं अपने अगले सेगमेंट भारतीय इतिहास से की ओर, जिसमें हम चलेंगे भारत में रेडियो और आकाशवाणी के सफर पर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सफर है ये। तो अब आप कर लीजिए अपनी आंखों को बंद और एक पल के लिए सोचिए, सुबह का वक्त, खिड़की से आती हल्की हल्की हवा, रसोई से उठती चाय की खुशबू और धीरे धीरे बजती रेडियो की आवाज,
आवाज एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिलों तक पहुंच ही जाती है। और भारत में अगर किसी आवाज ने पीढ़ियों को जोड़ा है तो वो है हमारा और आपका।

0: रेडियो। जरा सोचिए, एक छोटा सा रेडियो जिसके आसपास पूरा परिवार बैठ जाता था। कहीं समाचार सुने जा रहे हैं, कहीं क्रिकेट की कमेंट्री पर दिल धड़क रहा है, तो कहीं पुराने गीतों के साथ यादें मुस्कुरा रही हैं। भारत में रेडियो का सफर साल 1923 से शुरू हुआ। उस दौर में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये छोटी सी मशीन करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। फिर साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई और आगे चलकर साल 1957 में मिला वो नाम जो सुनते ही अपनापन महसूस होता है, आकाशवाणी। कहा जाता है ये नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता से प्रेरित था। 1947 में जब देश की आजादी की ऐतिहासिक घोषणा भी लोगों ने सुनी तो वो सुनी थी रेडियो पर। आज आकाशवाणी देश के लगभग हर हिस्से में वायु की भांति फैला हुआ है और आपको ये जानकर खुशी और गर्व होगा कि आपका आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं और 170 से भी ज्यादा बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। कार्यक्रमों को प्रसारित करके अपना धर्म बखूबी निभा रहा है। जी हाँ, धर्म यही कि जन जन तक पहुंचे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हर भाषा में हर दिल से बात करना जानता है। आज भी सुबह सुबह भजन बजते हैं, कहीं मौसम की जानकारी मिलती है तो कहीं कोई आरजे हंसते हंसते आपका दिन बना देता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये कि डिजिटल दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है, बल्कि आज भी मुश्किल समय में सबसे भरोसेमंद अगर किसी को माना जाता है तो वो है रेडियो को। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या नेटवर्क बंद होने की स्थिति, रेडियो तब भी अपना धर्म निभाता है। अब की साल 2026 में 13 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। यानी तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, लेकिन इंसानी एहसास से भरी आवाज और सोच की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। और शायद इसीलिए जब भी रेडियो बजता है तो सिर्फ गाने नहीं बजते बल्कि यादें, रिश्ते और भावनाएं साथ चलने लगती हैं। अब लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आज का माहौल बहुत हेक्टिक है, समय नहीं होता कि टीवी और फोन पर खबरें देख सकें। खैर, रील्स चलाने के लिए समय रहता है लेकिन खबरें देखने के लिए समय नहीं है। मान लीजिए वर्क बर्डन में फंसे हैं लोग, रेडियो की ओर शिफ्ट होने लगे हैं और कोशिश करते हैं कि जब काम करें तो रेडियो ऑन कर दें। तो आप भी यही कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको न्यूज़ सुनने के लिए या कोई ज़रूरी जानकारियों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है तो आप रेडियो ऑन कर दीजिए, रेडियो का बटन दबा दीजिए कोई भी काम करते हुए, क्योंकि रेडियो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बल्कि सूद करेगा। और क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस अपने प्यारे रेडियो के साथ, ज़रूर बताइए हमें। ये बताइए हमें लिखकर, आकाशवाणी का सफ़र कैसा रहा, आपको कैसा लगा आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव के साथ। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 8303211 पर, और मैसेज के पहले कैपिटल लेटर्स में AKB टाइप कर दीजिए और इसमें बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये रेडियो का सफ़र जो हमने आपसे अभी शेयर किया। अब हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
6: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य,

0: नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। अब बारी है उस सेगमेंट की जिसमें आपको रखना होता है तैयार कॉपी कलम। जी हाँ, हमारा और आपका फेवरेट मंगलवार विशेष चेक रिव्यू सेगमेंट। सबसे पहले आपको इस सेगमेंट के रूल बता दें, आपसे इसमें 7 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब आप हमें भेजेंगे। कहाँ भेजना है ये सवालों के बाद आपको बताया जाएगा। जो साथी सवालों का जवाब भेजेंगे उनके नाम का प्रसारण भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेगमेंट में सबसे पहले जान लें पिछले यानी चक्रव्यूह संख्या 605 के सवालों के जवाब। हमारा पहला सवाल था, आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा दूसरा प्रश्न था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर है 1927। हमारा तीसरा प्रश्न था, आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन किसके लिए प्रसारण करता है? उत्तर है, विदेशों में रहने वाले श्रोताओं के लिए। हमारा चौथा प्रश्न था, आकाशवाणी का पहला समाचार बुलेटिन किस भाषा में प्रसारित हुआ था? उत्तर है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में। हमारा पांचवा प्रश्न था, आकाशवाणी का प्रारंभिक नाम क्या था? उत्तर है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। हमारा छठवां प्रश्न था, आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रसारण करती है? उत्तर है, लगभग 23 भाषाओं और 100 से अधिक बोलियों में। हमारा सातवां प्रश्न था, आकाशवाणी का मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR किस वर्ष लॉन्च किया गया? उत्तर है, 2018 में। तो ये थे चक्रव्यूह क्रमांक 605 के सवालों के जवाब। चलिए अब जान लेते हैं उन दोस्तों के नाम जिन्होंने लिख भेजे हैं हमें जवाब। पहला जवाब लिख भेजा है पीपर पारा पाल जुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने। और साथ ही उत्तर भेजा है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा कविता, पंकज आयुषी और मीहू ने। साथ ही साथ गजानन येले और नवदीप येले ने जवाब भेजा है दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से। और वहीं नवागढ़ कटई से हमें संदेश मिले हैं नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत मयंक पुष्पांजलि के। गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से जवाब है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया और खुमेंद्र मसिया का। वहीं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल ने हमें जवाब भेजा है। और बलकरड़ वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र मनहरण वर्मा ने हमें जवाब भेजा है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा हमें जवाब मिले हैं दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा के। कृष्ण कुमार सिंगरौल, शीतला सिंगरौल, हंसिक एवं लवन्या सिंगरौल के जवाब हमें मिले हैं ग्राम सहा मालगी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। वहीं ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें जवाब भेजा है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा के जवाब हमें मिले हैं। साथ ही साथ राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे के जवाब हमें मिले हैं ग्राम पुतकी कला करवदा छत्तीसगढ़ से। दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा के जवाब हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, मीना करुणा अश्विनी और विपुल कामड़े ने हमें जवाब भेजा है। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से जवाब मिले हैं हमें प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू के। साथ ही साथ ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से जवाब भेजा है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा के जवाब हमें मिले हैं अड़ार नांदगाड़ छत्तीसगढ़ से। साथ ही साथ कैलाश चंद्राकर, मुकुंद्र चंद्राकर, पुणेंद्र चंद्राकर और साहिल चंद्राकर ने हमें जवाब लिख भेजा है छत्तीसगढ़ कोयलारी से, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज

कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने हमें जवाब भेजा है। वहीं गुड़ाराज से पेंटर मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा साहू, देवेंद्र साहू, लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू ने हमें जवाब लिख भेजा है। क्या हो गया, आपने मिस किया अपना नाम? कोई बात नहीं, तो अब जो हम आपसे सवाल करेंगे उसका जवाब आप हमें अगले जब हमें भेजेंगे तो आपके नाम का प्रसारण भी हो जाएगा अगले चक्रव्यूह में, तो ध्यान से सुनना है आपको। तो ये थे उन साथियों के नाम। तो अब हम जान लेते हैं कि आज यानी चक्रव्यूह संख्या 606 के सवाल। अब आपको सवाल बताए जाएंगे, चाहे तो आप इसे ध्यान से नोट कर लें या फिर अपनी सुविधा के लिए रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? दोबारा से ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल कितनी बार और कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? प्रश्न दोबारा से सुनिए, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल कितनी बार और कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? और आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और स्थानांतरण के बाद देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दोबारा से प्रश्न सुनिए, दिल्ली सल्तनत काल में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और स्थानांतरण करने के बाद देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? हमारा आज का अगला यानी कि चौथा सवाल है, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार वर्ष 2026 के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट मॉनसून पर किस प्रभाव के कारण बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है? दोबारा से प्रश्न सुनिए, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार वर्ष 2026 के दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर किस प्रभाव के कारण बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है? हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दोबारा से सुनिएगा प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? और आज का हमारा छठवां प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? दोबारा से ये प्रश्न सुनिए, हमारा छठवां प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? और आज का हमारा आखिरी सातवां सवाल है, किस वर्ष भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? दोबारा से प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, किस वर्ष भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो ये थे सवाल चक्रव्यूह संख्या 606 के। उम्मीद है आपने सवालों को नोट या रिकॉर्ड जरूर कर लिया होगा। आप इन सवालों का जवाब लिखकर भेजिए हमें हमारी ईमेल आईडी युववाणी अयोध्या yuvvaniayodha@gmail.com पर। संदेश में अपना नाम, पता और साथ में जवाब लिखकर भेजें। जवाब भेजने की अंतिम तिथि है 1 जून 2026। वहीं आपके नाम का प्रसारण होगा 2 जून 2026 को कार्यक्रम युववाणी में शाम को 5 बजे। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। दोस्तों, बाहर धूप बहुत तेज है, गर्म हवा चल रही है और ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। लू से बचना बहुत जरूरी है, खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीने के लिए प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल ना करें, रेगुलर इंटरवल्स पे आप पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी और आम का पना जैसे देसी पेय शरीर को राहत देते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचिए। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढकिए और हल्के सूती कपड़े ही पहनिए, और चाहिए तो सनग्लासेस भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी आराम मिलता है। बच्चों और बुजुर्गों का खास आपको ध्यान रखना होगा। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को लू से बचा सकती है। और चलिए अब सुनते हैं प्यारा सा गाना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। संगीतकार हैं विशाल शेखर, शब्दों से पिरोया है अनविता।

हमने सुना प्यारा सा गाना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। अब टिक टिक करती घड़ी की सुई कह रही है कि वक्त हो रहा है विदा लेने का, पर दिल कह रहा है बस कुछ पल और। तो रुक, सुनते हैं दिल की और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, और इन्हीं पलों में चलिए जान लें कि कल कार्यक्रम युववाणी में आपके लिए क्या होगा खास। कल होगी चर्चा विषय मिशन लाइफ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कहीं ना, और व्यक्ति विशेष में होगी बात कंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलू जी की। साथ ही साथ होगा खेल संसार और गीत संगीत से

0: जगेगी आपकी शाम। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको मेरे यानी दिशा श्रीवास्तव के साथ बहुत अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम कैसा लगा लिखकर बताइए हमें हमारी ईमेल आईडी yuvvaniayodhya@gmail.com पर। स्पेलिंग है yuvvaniayodhya@gmail.com। साथ ही करिए कमेंट आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के युववाणी रील पर, और आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर। और मैसेज टाइप करने से पहले कैपिटल लेटर्स में AKB जरूर टाइप कर दें। साथ ही अपना संदेश लिखें कि कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज आपने युववाणी का सफर तय किया अपनी आरजे दिशा श्रीवास्तव के साथ। साथ ही साथ बहुत गर्मी पड़ रही है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ध्यान दीजिए, बच्चों को धूप में निकलने से रोकिए और पूरी सावधानियां बरतिए क्योंकि लू से बचना बहुत जरूरी है। अब हम मिलेंगे नए अंक में नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923

कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये निर्गुण, लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश। ये निर्गुण हम आपको सुनवाएंगे अजय कुमार यादव और साथियों की आवाज में।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनिए,
4: कहिए, कहिए,
3: सुनिए।
5: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

गुरु प्रसाद गौड़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये देवी गीत, और अब कार्यक्रम के अंत में काशी भगत की आवाज़ में सुनिए ये निर्गुण।

काशी भगत अनपढ़ के गाए इसी निर्गुण के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके पश्चात ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री

0: प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The center has constituted a higher-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner, along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from the Red Fort last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remain crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन का यह प्यारा सा गीत। और अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से प्राप्त सूचना के अनुसार रिंकी उर्फ खुशबू वर्मा, पत्नी संजय वर्मा, निवासी ग्राम सिया भट्ट, थाना रुदौली, जिला अयोध्या, दिनांक 17 मार्च 2026 की रात्रि 12 बजे

से अपने निवास सिया भट्ट उर्दौली से कहीं लापता हो गई हैं। लापता रिंकी उर्फ खुशबू वर्मा की उम्र लगभग 26 वर्ष, कद लगभग 160 सेंटीमीटर, शरीर सामान्य, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंखें सामान्य और बाल काले तथा घने हैं। घटना की तिथि को लापता रिंकी उर्फ खुशबू वर्मा ने शरीर पर काले रंग के फूल छपे साड़ी और पैरों में फैंसी सैंडल पहन रखी थी। लापता रिंकी उर्फ खुशबू वर्मा के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: न्यूज वन यार एप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
0: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया संस्कृत समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुरक्षाबलस्य साञ्चुपोस्ट् इत्यत्र आयोजिते प्रहरी सम्मेलने सम्बोधयन्नासीत्। सः अवदत् यत् अस्याः चतुस्तरीय ग्रिड् व्यवस्थायाः साहाय्येन सीमायाम् उद्भूतानां विभीषिकानां पूर्णशक्त्या प्रतिकारः भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां गंगटोक नगरं सम्प्राप्तवती। स्वकीया यात्रावधौ राष्ट्रपतिः महिलानां कृते समर्पितं पिंक बस यानानां उद्घाटनं करिष्यति, यस्योद्देश्यं राज्य सुरक्षितं सुलभं परिवहन सौकर्यं इत्यस्य परिष्कारः भवेत्। सा सिक्किम राज्यस्य समृद्धिं पारिस्थितिकं पुष्प परंपरां च द्रष्टुं रिड्ज पार्क इत्यस्य आर्केडियम अपि गमिष्यति। पश्चात् दिने सा नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी इत्यत्र गमिष्यति, यत् दुर्लभाः पाण्डुलिपीनां बौद्ध सांस्कृतिक कलाकृतीनां च संरक्षणाय प्रसिद्धः अस्ति। भारतं समेत्य समग्र विश्वात् कोटिशः जनाः अद्य सऊदी अरेबिया देशे हज यात्रां कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः पञ्चदिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रायाः आरम्भः लक्षशः हज तीर्थयात्रिणः मीनानगरे रात्रिं व्यतीतवन्तः। अधुना ते अराफात क्षेत्रे मुख्य हज अनुष्ठानार्थं प्रार्थनार्थं च समागच्छन्ति। ते तत्र पूर्णदिनं यापयन्ति, प्रार्थयन्ति च। तीर्थयात्रिणः निमरा मस्जिद इत्यत्र खुत्बाय हज अर्थात हज प्रवचनं श्रुतवन्तः। ततः सायंकाले ते मुजदलीफा नगरं प्रति प्रस्थानात् प्राक् अपराह्ने सायंकाले च संयुक्तरूपेण प्रार्थनां कुर्वन्ति। भारत ऋतु विभागेन अद्य दिल्ल्याम् उष्ण तरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्ता। राष्ट्रीय राजधान्याम् उष्ण तरंगस्य स्थितिः श्वः पर्यन्तं यथावदेव भविष्यति इत्यपेक्षते, यत्र अधिकतमं तापमानं 44 46 डिग्री सेल्सियस परिमितं यावत् भविष्यति। अद्य हरियाणायां चंडीगढ़े पूर्वी मध्य प्रदेशे पंजाबे उत्तर प्रदेशे विदर्भे तथा पश्चिम राजस्थान राज्ये च तीव्र उष्ण तरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमितम्। अत्रांतरे अद्य श्वः दक्षिण पश्चिम प्रावृत कालः केरल राज्यं प्राप्स्यति इत्यपेक्षते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कंप्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
2: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
3: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
2: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
3: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9592424 और 7800-37-2222।
1: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर्ग।

0: गांव के मैं पहला लोकगीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमरनाथ और साथियों की आवाज में।
1: कर जम के पढ़ाई हमार ललना, कर जम के पढ़ाई हमार ललना लिया यापन जी।

रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682805

0: नियामत अली और साथियों के गाए इसी प्यारे से लोकगीत के साथ ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: न्यूज ऑन एयर ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:45 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त।

0: और लोग भी।
1: अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कृषक मैं महिला बहनों जय हिंद। और मीना बहनी,
5: हाँ मीना बहनी,
4: देखते हा कि ये सैती जोन भीषण गर्मी है ना, वो मैं सुबेरे संजा जोन अपने आसपास तन को हरियाली दिखाई दे जात है ना, तो अपने आंखन का बड़ा ठंडक पहुंचावत है और आंखे के साथे साथे मना भी संतुष्ट हो जात है। हरियाली देख के जीरा एकदम आन हो जात है।
5: हाँ बहनी,
4: और यही लिए अपने घर के आस पास सब बहनन का चाही कि जोन खाली जमीन है, जमीन है तो बढ़िया है, ना ही तो छत होए, बालकनी होए, अमा हरी भरी गृह वाटिका जेका अपने सब किचन गार्डन भी कही थे ना, ओका लगावे। और ई लगाओ भी बहुत आसान है
5: बहनी। देखा गृह वाटिका जोन बात कहे तो आसान है, एक साथे साथे ना एका लगाए सी होत है, शुद्ध ताजा और जैविक सब्जियन मिल जाती अपने सब।
4: हाँ बहनी, अब देखते हैं कि आजकल जो बाजारे में साग सब्जी देखा, देखे में कितना नीक रहा है, मूला वहमा जोन है, नकली रंग है, रसायन तमाम तरह के और संक्रामक रोग से वो ग्रसित रहा है। और अपने सब अगर अपने गृह वाटिका में ये सब्जी उब्जी लगाए ले ना, तो अपने सबका यह से बिल्कुल निजात है। बस ये ध्यान देखा है कि जो नी गृह वाटिका लगावे वह माँ ऐसी जगह रहे जमा भाई थोड़ा सा धूप भी आवत हुए।
5: अरे बहनी, पौधन बदे जौन बात धूप तो बहुत है जरूरी। हाँ। है धूप, माटी और पानी, ये तीनों जो रहा था तब हरियाली छाए रहा था। और कहा भी गवाह है, जहाँ रहे हरियाली वहीं रहे खुशहाली।
4: बिल्कुल सही बात है, खुशहाली तो रहबे करे। और अपने सबका चाहिए ना कि जैसे क्या अगर जगह है वैसन तो अपन क्यारी बनाए ले, या गमला होए, या पुरान जो बैग होते है ना, ये पन्नी वाला पैकेट बोरी वाला, ओके भी इस्तेमाल कर सकी थे अपने सब पेड़ पौधा लगावे माँ। बस ये करे कि वह माँ जौन है सड़ी गोबर के खाद होएगा और थोड़ के रेत जौन है अगर मिला देना तो माटी थोड़ा भुरभुरी हो जाते, और ऐसे पानी वह माँ रुकत है।
5: हाँ मीना, और एक साथे साथे देखा अपने घरे जैसे साग भाजी में है पालक है, मेथी है, धनिया है, मिर्च, टमाटर, बैगन, ये सब जब मनई लगाए दे थे ना, तो आरु बगल के मनई देखा थे कितना जुगत से वह जौन बा अपने गृह वाटिका का देखभाल करतीन और बहुत बढ़िया है, ताजी सब्जी भी प्राप्त करतीन।
4: हाँ, और बेल वाली जैसे जौन सब्जी है ना, जैसे लौकी है, तरुई है ना, कद्दू होगा, एक आध है बहनन का चाहे कि अपने दीवार के किनारे जैसे जाली लगाए दे कुछ सहारे पे, वह का भी लगावे तो ताजी सब्जी तो भाई मिलवे करे। और हरियाली अगर फल के ताई जैसे अपने सब अगर आरी बारी भाई जगह पे सब निर्भर है,
5: जौने मेर जकरे जगह है,
4: वही तरह से भाई नींबू है, अमरूद है, एक भी पौधा लगाए सकते हैं। और बीच बीच में घास के जैसे लान वगैरह बनाए दे तो संजा के समय वो मां बैठे कभी काम आवे।
5: हाँ बहनी, कमरा में बैठे से जौन बा जान लिया स्वास्थ्य बढ़िया ना रहे, यह नाते अपने बाग बिरवा भय, गृह वाटिका भय, फूल सजाए है मने यहाँ, तो गमला मत कितना सुंदर उलागत, उसे जौन बा ताजा ऑक्सीजन भी मिलत है और अपन जौन आँख है जौन कहती है वह जुड़ात है।
4: हाँ, अब मौसम के अनुसार देखा जौन गर्मी पड़ते है यहाँ तो देखा पानी के बहुत जरूरत पड़े, और बाकी भाई मौसम के अनुसार वो मैं सिंचाई करे। और कीड़ों से बचावे के ताई देखा हर 15 दिन पे अपने सबका चाहे कि नीम के तेल के जौन है वो मैं घोल बनाए के छिड़काव कर दे, और अपन जो है जौन साग सब्जी है गृह वाटिका का ओका सुरक्षित कर ले।
5: बिल्कुल मीना सही कहती है, यह मेरे से अगर नीम के जौन बा छिड़काव कर रही है तेल के, तो अपने सब्जियन पे माले फलो रहे वहाँ पे ओके छीटा पड़े तो नुकसान
4: हो जाए,
5: रासायनिक जौन दवा होती वो बहुत नुकसान करत है।
4: हाँ, और ये माँ देखा अपने गृह वाटिका में बहने पुदीना है, हरी धनिया है, ये का भी उगा सका थी, तो ताजी सब्जी और फल अगर अपने गृह वाटिका से मिले वो का तोड़ो वो का बनाए के खाओ तो वो के दूसरे आनंद मिला था, बड़े बड़ी खुशी हो जाता है।
5: अरे मीना, पुदीना की बात की हो ना, वो देखा अब कच्चा आम में पुदीना की चटनी बन जाए तो दो चार कौर और मने खाए।
4: हाँ, और करी पत्ता है, करौंदा है,

0: यानी जौन भी फल साग सब्जी अपने सब अगर आसानी से हुआ जगह है तो का बहने लगाए सके थी और घर गृह वाटिका अगर घर के आगे पीछे है बगले जगह है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो भाई देखो छत पे अपन गमला रख ले, आंगन में रख ले, जैसे जगह पे सब अपने सबके
1: अपने घर का एकदम सजाए है, साथे साथे खायो बदे मिले। पर मीना यह सहती देखा अपने बाग वाग मा आम को बात अभी होत रही ना, आम कटहल के जौन बाटे कितना फल लाग है वो का कैसे का करे के अपने आय के स्रोत बढ़िया बने।
0: अरे बहनी का बात कहू, देखा आम एवं कटहल से संबंधित उत्पाद और यह विषय पे आज हम ममता कुमारी डॉक्टर ममता कुमारी बहनी जौन रही ना वह आए रही तो हम उनसे बतवान रहे, तो हम सोची थे काहे ना अपने और बहनन का ही बत कही सुनवाई दे ताकि जाए वे लाभ उठावे।
1: हाँ बहनी देखा ही बतिया करते ही अब बहने सुने अपने सब और सुना जाए फिर।
0: बहने देखो अपने सभी समय समय पर रेडियो के द्वारा तमाम प्रकार के जानकारी दिवावा जाते हैं और यही जानकारी के क्रम में आज हमरे स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर ममता कुमारी जी जौन की सह प्राध्यापक खाद्य एवं पोषण विभाग सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। डॉक्टर साहब आज हमें ये बताई हैं कि आम एवं कटहल के मूल्य संवर्धित उत्पाद के विषय में, तो डॉक्टर साहब आपके स्टूडियो में स्वागत है और सबसे पहले हमें ये बतावें कि मूल्य वर्धन क्या है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल्य वर्धन एक बहुत ही आय बढ़ाने का स्रोत बनकर उभर रहा है। ग्रामीण महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत ही सस्ता स्रोत है जिससे कि वह अपनी आय बढ़ा सकती है। मूल्य वर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है यानी कि उसका प्रोसेसिंग की जाती है।
0: अच्छा।
2: और उस जिससे कि जो भी उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता उपयोगिता एवं उनका बाजार का मूल्य बढ़ाया जाता है। जैसे इसमें आता है जैसे कि आम से अचार बनाना, कैंडी बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम जली, अन्य बहुत सारे उत्पाद हैं जिसको कि हम उनके रूप से अलग करके बनाते हैं।
0: तो क्या ये ग्रामीण महिलाओं के लिए मूल्य वर्धन जरूरी है?
2: मूल्य वर्धन आजकल हम देखते हैं कि सभी जगह उपलब्ध है। मूल्य वर्धन के फायदे ये हैं कि वह रोजगार में वृद्धि करता है, आय में वृद्धि करता है और फल या सब्जियों की जो बर्बादी होती है उसको रोकने में बहुत कारगर है। इनसे हम नए नए उत्पाद बना सकते हैं, उनकी बाजारों में अच्छी खरीद मिलती है जिससे कि आय बढ़ सकती है।
0: अच्छा हम आज जो विषय है आम एवं कटहल, तो आम से कौन कौन से मूल्यवर्धक उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
2: आम के अनेकों अनेक उत्पाद बनाए जा सकते हैं जैसे कि अचार, मुरब्बा, स्क्वैश, जैम, जेली, कैंडी, अमचूर पाउडर घर पे ही बनाते हैं हम लोग, चटनी है, आम की टॉफी है, ये सारे अनेकों अनेक पदार्थ उत्पाद हम बना सकते हैं।
0: आम के जैम जो बनावा जाते हैं कि का विधि है थोड़ा संक्षेप में हमारे पंचन का बता दें।
2: आम का जो जैम बनाने के लिए सबसे पहले आपको आम का गूदा ले लेना है। उसमें जितना आम का गूदा है, अगर आम मीठा है तो आप चीनी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन आम का जितना गूदा है उतना ही आप चीनी ले लें और उसको एक कढ़ाई में धीमी आंच पर आम के गूदे को और चीनी को मिला करके पका लें, धीमी आंच पे लगातार पकाते रहें। अब इसमें जैसे ही आप पकाते रहेंगे उसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या नींबू का रस निचोड़ दें उसमें।
0: अच्छा।
2: और धीमे धीमे चलाते हुए जैसे ही वो एक गाढ़ा मिश्रण बन जाए और आपके चम्मच से निकलने लगे या गिरने लगे अच्छे प्रकार से, तभी आप गैस बंद कर दें और फिर उसको आप ठंडा करें, बोतलों में भरें और इस तरह से आप जैम बना सकते
0: बना
2: हैं।
0: सकते हैं। अच्छा आम के और काव काव चीज बनावा जा सकते है?
2: जैसे कि आम की आप पापड़ बना सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट और प्रचलित उत्पाद है।
0: अच्छा पापड़ कैसे बने ये बता दीजिए जरूर।
2: आम का पापड़ बनाने के लिए आपको उसी में गूदा लेना है, आम का गूदा लेना है, उसको मिक्सी में पीस लेना है।
0: अच्छा।
2: अब उसमें थोड़ी चीनी, जैसे आम का गूदा 500 ग्राम लिया है तो चीनी 300 से 500 ग्राम मिठास के ऊपर,
0: मतलब निर्भर करता है।
2: पक्का आम?
0: अच्छा
2: पके हुए आम का भी कर सकते हैं, आप इसे कच्चे आम के साथ में भी कर सकते हैं। आम का गूदा ले लें पक्का या कच्चा, उसमें चीनी मिलाएं, उसको थोड़ी देर गैस पे पकाएं, 5 से 10 मिनट। अब इसमें मन चाहे आप इसको चटपटा खाना चाहते हैं तो चाट मसाला मिला लें, अगर आपको तीखा थोड़ा सा खाना है तो काली

0: मिर्च मिला लें, काला नमक मिला लें। अब इसको साथ में थोड़ा सा पकाते हुए एक थाली में घी लगाएं और उसमें पतला हल्का फैला लें। अच्छा। और इसको थोड़ी देर धूप में फैला सकते हैं तो धूप में कर लें, नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ आँच है तो घर के अंदर ही 3 से 4 घंटे में, इस गर्मी में वो 3 से 4 घंटे में सूख जाता है। और फिर उसको धीमे से निकाल लें, जब वो सूख जाएगा तो वो परत जैसा निकल जाएगा। अगर सूखा नहीं है तो वो टूट जाएगा, मन चाहे आकार में आप काटें और उसको अच्छा खा सकते हैं।
1: जैसे पहले वो बनावट रहा अमावट
0: बिल्कुल, आज इसको हम आम पापड़ बोलते हैं।
1: और एक आम के और बताएं ना आप स्क्वैश बनावे का, हाँ। वो कैसे बने?
0: ये आम का एक बहुत ही तरोताजा हम जिसको बोलते हैं ड्रिंक बोल सकते हैं, आम का जूस जैसा होता है। आप आम का गूदा लें और उसको मिक्सी में पीस लें,
1: हाँ।
0: एक सरीखा कर लें आम के गूदे को। अब चीनी और पानी का घोल बना लें, जितना आम का गूदा है उतना ही चीनी चाहिए और उसका डबल पानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: अब उसको चीनी और पानी का एक चाशनी बना लें, उसका कोई तार नहीं बनाना है, बस जितना चीनी पानी में घुल जाए उतना ही रखना है। और उसको ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद आम का जो गूदा आपने निकाला है उसमें मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ठंडा होने पे उसमें नींबू का रस निचोड़ लें और फिर उसको छन्नी से छान करके बोतलों में भर लें। अगर इसको आप 3 लंबे समय तक भी रख सकते हैं, अगर साल भर रखना है तो इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड बहुत ही 1 ग्राम जैसा मिलाना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: और अगर आप नहीं मिला सकते हैं तो इनको 3 महीने तक आप आराम से फ्रिज में रख करके भी उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा, कटहल से कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते?
0: पहले इसको सिर्फ सब्जी के तौर पे ही खाया जाता था, सब्जी या फल के तौर पे, लेकिन आजकल हम इसके नए नए उत्पाद देख रहे हैं मार्केट में, जैसे कि कटहल से चिप्स बनाए जा रहे हैं, अचार तो बनता ही है, इसका मुरब्बा बनता है, कैंडी बनती है। और आजकल एक नया प्रचलन चला है कि पौधों से भी हम मांसाहारी जैसा ही रूप ले सकते हैं, जो कि हम प्लांट मीट बोलते हैं। जैसा कि मांसाहारी स्रोत से हम मीट खाते हैं, वैसा ही आजकल हम पौधों से भी वो मीट ले रहे हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है सोयाबीन। आपने न्यूट्रीला देखा होगा, न्यूट्रीला देखने में और खाने में बिल्कुल मांसाहारी जैसा लगता है, ऐसा ही हम कटहल से भी बना रहे हैं आजकल। और इसके अलावा आप कटहल की सब्जी तो खाते ही हैं, उत्पाद हम ले सकते हैं, जैम भी बना सकते हैं, उसकी बर्फी बना सकते हैं, कटहल का आटा बना सकते हैं। इन सब चीजों से हम आजकल मार्केट में देखते हैं कि कटहल के विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रचलित हो रहे हैं।
1: आप बताएं चिप्स और बर्फी ये कैसे बने?
0: कटहल का चिप्स बनाना बहुत ही सरल है। कटहल का चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छील लें, साफ कर लें। और कटहल के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है आपका कोआ जिसके अंदर बीज बंद होता है, एक होता है रेशा। रेशे को अलग कर लें, बीज को अलग कर लें। अच्छा। जो कोआ है उसको ले लें, कोए को पतला पतला काट लें, मन चाहे आकार में आप काट सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। अब एक तरफ 2 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच खाने वाला चूना, अच्छा। उसको मिला लें, मिला करके थोड़ी देर रख दें तो चूना जो नीचे बैठ जाएगा, जो पानी ऊपर है वो पानी ले लें। उस पानी में कटहल के आपने जो स्लाइस करके रखे उसको उस पानी में डाल दें और उसको आधे घंटे तक उसमें रहने दें। आधे घंटे के बाद अब एक पतीले में पानी गर्म करें, उसमें नमक और हल्दी मिला करके उबाल लें। अब जो हमने कटहल को जिस चूने वाले पानी से में रखा था उससे निकाल करके 2-3 बार साफ पानी से धुलकर पानी उबल जाए जो हमने रखा है गैस पे उसके अंदर डाल दें। 2 मिनट के लिए उसमें रखें और ठंडे पानी में डाल करके दूसरे कपड़े पे निकाल लें।
1: अच्छा।
0: अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उस तेल में धीमी आंच पे जो हमने स्लाइस काट के रखे हैं उसको धीमी आंच पे तलें। जैसे ही आवाज आना बंद हो जाए तेल में से, वैसे ही आप धीमी आंच से देखेंगे हल्का हल्का कटहल के चिप्स कुरकुरे होने लगे और उसको अब निकाल लें, ठंडा करें, उसमें नमक और या दूसरे चाट मसाले जो भी मिलाना है वो आप उससे मिला करके खा सकते हैं। ये बन गया आपका कटहल का चिप्स। अब बर्फी बनाने के लिए आमतौर पे बर्फी जैसे बनती है वैसे ही इसकी भी बर्फी बनती है, लेकिन कटहल की बर्फी बनाने के लिए आपको कोआ लेना पड़ेगा। उसके बीज अलग कर दें, कोआ लें, कोए को पहले मिक्सी में पीस लें, एक सरीखा कर लें, उसके बाद उसको कढ़ाई में डालें, घी डालें, उसके बाद कोआ डालें और उसको चलाते रहें। चलाने से क्या होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, सूख जाएगा। अब पानी जैसे सूख गया उसमें आप खोआ डालें, जितना मिश्रण है उसका आधा खोआ लें, खोए के साथ में उसमें चीनी डाल दें, जितना खोआ है उतना ही चीनी भी डाल दें और साथ में चलाते रहें। लगातार चलाने के बाद में जब वो एक मिश्रण जैसा थक्का जैसा बन जाए उसमें आप

0: इलायची पाउडर और अपने मनपसंद की ड्राई फ्रूट्स डाल करके उसको जमा दें और मनपसंद आकार में काट दें।
1: अच्छा, ये तो रही बात चिप्स और बर्फी के, और आम और कटहल के अचार का भी विधि थोड़ा संक्षेप में बता दें तो।
0: आम और कटहल का अचार, आम का अचार वैसे तो सभी घरों में बनता है, सबके बनाने की अपनी अपनी अपनी विधि है। जो हम बनाते हैं वैसा हमें बता रही हूँ।
1: हाँ।
0: आम का अचार बनाने

0: रही हो।
1: हाँ,
0: आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप आम को साफ कर लें, उसमें पानी ना रहे, और उसके फाकियां काट लें, बड़े चाहिए या छोटी चाहिए। अब उसमें आप, अगर आपको इंस्टेंट बनाना है, तुरंत खाने के लिए बनाना है, तो उसमें आप एक तरफ सारे मसाले ले लें जो भी आप डालते हैं, या फिर जैसा मैं बता सकती हूँ कि आप पचफोरन ले लें। पचफोरन जिसमें कि 5 मसाले होते हैं, उसमें जीरा, सौंफ, सरसों और आपका राई, मेथी, इन 5 मसालों को आप भून लें और उसका पाउडर कर लें। अच्छा। इसके साथ में गरम मसाले जितने होते हैं उनको भी थोड़ा सा भून लें और उनका पाउडर बना लें। अब कटे हुए आम में आप सारे ये मसाले मिला लें, नमक, हल्दी, मिर्च, सारी चीजें मिला करके रख लें, और उसके ऊपर सरसों का तेल गरम करके, ठंडा करके फिर उसमें डालें और उसको एक साफ बॉटल में भर लें। ये तो हो गया इंस्टेंट अचार। भरने के बाद आप उसको 1-2 दिन तक धूप में दिखा दें। ये तुरंत खाने वाला अचार है, 2 दिन के बाद में आपका बिल्कुल खाने तैयार हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम है अगर आपके पास में, तो एक रात पहले आम को काट के उसमें नमक और हल्दी मिला करके रख दें और उसका रात भर में पानी निकल जाएगा, और उसको एक कपड़े पे फैला लें ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। फिर उसके बाद यही सेम विधि आपको करनी है, सारे मसाले उसमें डाल लें, तेल डाल लें, और फिर उसके बाद में आप उसको बंद करके, साफ बॉटल में बंद करके रख लें। कटहल का अचार बनाने में यही सेम विधि लगती है, लेकिन कटहल के पीसेस काट लें और उसको थोड़ी देर के लिए भाप लगाना होता है। पानी में, एक पतीले में पानी गर्म करें, उसके ऊपर छन्नी रखें और उसमें जो कटहल के छोटे छोटे पीसेस काट के रखे हैं उनको भाप लगा दे 5-10 मिनट। उससे क्या होगा, कटहल जो बहुत ज्यादा सख्त है वो थोड़ा मुलायम हो जाएगा, और उसके बाद पीसेस में जो थोड़ा पानी आ गया है उसको थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखा लें, 1-1.5 घंटा सुखा लें। जब पानी सूख गया है, अब इसमें सारे मसाले जो भी आप पसंद करते हैं, जो मैंने बताया या जैसे आपके पसंद के हैं, वो आप मिला लें, तेल गरम करके, ठंडा करके उसमें मिला करके, और 1-2 दिन तक धूप में दिखा लें। तो इस तरीके से आम के, कटहल के अचार की विधि भी आप कर सकते हैं,
1: मतलब कटहल और आम का अचार भी तैयार
0: हो जाएगा।
1: डॉक्टर ममता कुमारी जी, आज हमारे स्टूडियो में आए के आम एवं कटहल के मूल्य संवर्धित उत्पाद के विषय में इतनी बढ़िया जानकारी दी, यह के ताई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मीना,
1: हाँ बहनी,
2: कितना बढ़िया से जौन बा वही ममता कुमारी बताई ना आम एवं कटहल के संवर्धित उत्पाद के बारे में, और खूब फरियाए पूछबो की हूँ तुम।
1: अरे बहनी, देखा जब जैसे जैसे पूछा जाए ओके जवाब मिला था, तो उसे अपने बहनन का कितना लाभ मिला था, और हमें उम्मीद है कि देखा ऐसे थी आम और कटहल के समय चलते हैं बहनी लोग आम के अचार, कटहल के, और जो उन पापड़ बताए है ना, और स्क्वेश बना के रखा, जेली बना के रखा,
2: अरे सब बना के तो जाना बहुत निक लागा था, काट काट धरे।
1: हाँ, और चाहे जब वो
2: का उपयोग मिला, दालन का कही देख भैया यह टाफी है, बाजार से ना खरीदे, खाए आम एक टाफी है, खा जाओ।
1: बिल्कुल,
2: पर बहने लोग मीना ना, यह सहती जो उन कहा दिया आम का ना, आम कटने से जब काटत हुई है तो भाई उनके हाथ जरूर पिरात हुए।
1: हाँ, तो देखो अब हाथ पिराए के बात करो ना, तो देखो
2: नक्टा
1: भी लेके, हाँ नक्टा भी लेके आए ना, देखा चंचल सांडिल बेनी काव गावा थी, चलो सुना जाए।

0: मीना।
1: हाँ बहनी।
0: कहाँ लेके बैठी हो बहनी?
1: अरे बहनी देखा अभी तो भाई मन मनसाइन हो गया बहनन का। अब बहने अगरत हुई है कि जौन मौसम के वो है ना वो अपने सबका मिल जाए, मौसम के जानकारी उनका दवावक है, तो वही लेके बैठी है कि बहनन का बता दे। तो अधिकतम तापमान जौन है वो है 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस
0: और सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतर है जौन ना 78% और आर्द्रता न्यून

0: माह 38% हवा का गति है 6.7 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और दिशा रहे दक्षिणी पश्चिमी।
1: हाँ बहनी, और जो पूर्वानुमान यही है कि आगामी सप्ताह दिनांक 27 से 31 मई और 29, 30, 31 मई का पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का से मध्यम बादल छावा रहे और अधिकांश जगह पे गरज चमक के और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी और हल्की बरसात भी हो सकत है। मुला गरम लू चले के संभावना आए बहनी, है ना। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखो सामान्य से अधिक, जैसे 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहे के संभावना है।
0: हाँ मीना, और जौन बा पूर्वा हवा के सामान्य व सामान्य से तेज गति से चले का संभावना है, जैसे अब यू बहनी ना उमस भरी गर्मी से राहत का आसान नहीं बा।
1: हाँ बहनी, और यही लिए बहनी हम तो यही कहा कि सब के घर से बाहर जब निकलो तो अपन मुड़ जौन है ओका ढाक ले, चश्मा लगाए ले, छतरी ले ले और पानी के उपयोग ज्यादा से ज्यादा करे। हरी साग सब्जी जौन है और हली फल फूल जौन है ना, ये काव कहते खीरा है, ककड़ी है, हाँ ये सबके सेवन ज्यादा से ज्यादा करे। मुला देखा आप कार्यक्रम के जोनी है ना घड़ी के सारा है कि कल के कार्यक्रम भी अपने पंचन का बताए दीन जाए कि कल जोन रहे चर्चा हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत
0: और भेंटवार्ता रहे किसान उत्पादक जोन बा संगठन, कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बारे में बताई है श्री अरुण कुमार वर्मा।
1: हाँ बहनी, और गीत गौ नहीं बाजार भाव मौसम तो कार्यक्रम मराबे करत है। मुला घड़ी के सारा है कि अपने सब बहनन से अनुमति लीन जाए यही कार्यक्रम में फिर मिलब। तब तक के लिए मीना
0: और उर्मिला का देनमति
1: जय हिंद।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ।

आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM पर हम जानकारी दे दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी हां, आज रात 8:15 पर सुनेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 पर महफिली गजल, आज रात 9:30 आप सुन पाएंगे सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। यथोचित जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब बातें कल की। जी हाँ, कल यानी बुधवार 27 मई 2026 को हमारी सभा आरंभ होगी रोज की तरह प्रातः 5:53 पर। भक्त संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन पाएंगे कल प्रातः 7:30 पर।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 8:15 पर। 8:30 पर सुनेगा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम उदय, जिसमें आज की बात होगी तरुवर फल नहीं खाते हैं नदी न संचय नीर विषय पर। अन्य जानकारियों के अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे फरीदा बानू की वार्ता, जिसका विषय होगा बहू बेगम का मकबरा इतिहास के आईने में। कल सुबह 9:00 सुनेगा व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:00 फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी करेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। कल दोपहर 2:00 सुनिएगा गीत गजल व भजन कार्यक्रम गीतांजलि। 2:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम अंगना, जिसमें चर्चा होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि विषय पर। इसी कार्यक्रम अंगना में आप सुन पाएंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम।

सुरमाला। कल शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी में चर्चा होगी मिशन लाइफ एकल उपयोग प्लास्टिक को कहना विषय पर। व्यक्ति विशेष में जानेगा कंदुकुरी वीरेश लिंगम पुंतुलु के बारे में। इसी कार्यक्रम में हमारा सेगमेंट खेल संसार भी आप सुन पाएंगे। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल शाम 5:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में, और 6:30 पर कार्यक्रम होगा गूंजे स्वर गांव के। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन पाएंगे कल शाम 6:10 पर। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन कार्यक्रम, रात्रि 9:15 पर महफिल गजल, और 9:30 सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल शाम 6:45 पर कृषक बंधु अपने कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा सुनेंगे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर। साथ ही सुनेगा अरुण कुमार वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड रुदौली अयोध्या के साथ की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह तो थी केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रातः 5:53 से रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र 101.9 FM तथा न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस वक्त आपसे रूबरू है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। कुछ ही पलों में कुछ एक संदेशों के पश्चात आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को

0: ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
2: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के

0: साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
1: लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:30 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।
4: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में यादों की बारात फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत RD बर्मन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शायरा अपूर्वा के लिखे इस गाने के साथ। स्नेहा शंकर ने इसे गाया है, संगीत अभिजीत श्रीवास्तव का है।

अभी आपने नेहा कक्कड़ की आवाज में जानी और ललित सेन का लिखा गीत सुना, संगीत तनिष्क बागची और ललित सेन का था। आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज, गीत रश्मि विराग का, संगीत पायल देव का।

हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का दूसरा भाग। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: గుడ్ ఈవినింగ్ అంకుల్.
1: ఓ గుడ్ ఈవినింగ్ విక్రమ్.
0: హలో ఆంటీ.
2: అచ్చే హో వికీ.
0: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी.
1: अरे भाई ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है.
2: बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो. वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है.
0: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ. अरे कहाँ है सब लोग?
2: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ. मैं चलो.
0: नहीं आंटी आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ.
1: He is a smart boy.
2: बहुत. देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है. अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा. किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो.
1: अरे भाई मैं उसकी नेचर की बात

0: अच्छा है, हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
1: मैंने गौर नहीं किया।
0: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर हैं, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
1: देख रहा हूँ।
0: कीवी से लकी गर्ल।
1: आज बहुत चहक रही हो।
0: तुम जो आ गए हो।
2: I'm jealous।
0: तुम्हारी किस्मत दिल पर रहेगी ना ये बेमहरियाँ तेरी, जाना और इस तरह से कि मुड़कर ना देखना।
2: तुम्हारा
0: आदब है, आदब।

0: देखे मुड़ कर ना देखना। आधे बैठे
1: यार, बड़ी देर कर दी आते हैं।
2: ओ हेलो चोपड़ा।
3: हेलो, अरे कहाँ रहते हो यार?
2: तुम सुनाओ कहाँ रहते हो, साल भर बाद दिखाई देते हो।
3: क्या बताऊँ दोस्त, मेरी शादी जो हो गई।
0: मैंने कोई जंजीरें नहीं बांध रखी है भाई साहब।
2: नमस्कार भाभी, लीजिए आप तो फौरन ही डिफेंस पे उतर आए।
0: देखिए ना, खुद तो रात दिन ऑफिस में पड़े रहते हैं और बदनाम हो बेचारी बीवी।
1: अभी तो
0: तुम्हें हार्ट बीट।
2: अरे किशोरी क्या खिताब है भाई?
0: जनाब शायर हो चुके हैं और धड़कन तो खुल्लस फरमा दे। मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया।
2: यार तुम तो अच्छे भले थे।
4: हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं।
2: भाई जी, भाई जी, जायदा ये केस सीरियस है।
0: लेकिन इससे ये तो पूछ लीजिए कि वो है कौन।
2: भाई कोई होगी, हमें तुम्हें क्या।
0: मुसीबत तो यही है कि वो कोई भी नहीं है। ये हजरत गर्दन उठाए उठाए फिरते हैं लेकिन कोई भी पट्टा डालने को तैयार नहीं है।
2: ये बात
3: सुनो, कीवी कहाँ है?
5: जी बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई।
3: ओ हेलो कीवी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
5: थैंक यू। आपके लिए क्या लाऊं?
3: नाराज हो कीवी?
5: नहीं तो मैं क्यों होने लगी नाराज?
3: नहीं तुम नाराज हो क्योंकि मुझे आने में देर हो गई।
5: ये शोर, ये हंगामा, कह कह की भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेले बन का शिकार होकर कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे?
3: I'm sorry, कीवी. Really?
5: मेरा जन्मदिन के साल में 10-12 बार आता है।
3: ये मैंने कब कहा?
5: तो फिर साल में एक बार भी तुम वक्त पर नहीं आ सकती।
3: ये बात नहीं कीवी कि मैं वक्त पे आना नहीं चाहता, पर क्या करता, बस उठते उठते कुछ खत आ गए थे, उनका जवाब आज ही जाना जरूरी था, बस वो खत्म करते ही मैं चला
5: आया। नहीं रुक सकते थे।
3: रुकने को क्या नहीं रुक सकता?
5: वक्त नहीं रुक सकता ना। चाहती तो मैं भी यही थी कि घड़ियां ठीक 6:30 बजे रुक जाए और जब तक तुम ना आ जाओ वो वहीं रुकी रहे। पर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, तुम आ ही गए, मेरे पर यही बहुत एहसान है। वरना सबके सामने मेरी नाक कट जाती। पहले ही मेरी फ्रेंड्स मुझे बेवकूफ कहती है।
3: वो खुद बेवकूफ
5: नहीं, मैं सोचती हूँ मैंने ही अपने आप को बहुत गिरा लिया है। तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो।
3: कैसी बातें करती हो कीवी, तुम्हें क्या मालूम सिर्फ तुम्हारी खातिर आज मैंने कितनी इम्पोर्टेंट रिसेप्शन कर दी।
5: ना ना ना, मेरी खातिर क्यों मिस करते हो इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी? जाओ जाओ, हो आओ।
3: मेरा मतलब ये नहीं था कीवी, तुम तो जरा सी बात को लेकर।
5: जरा सी बात ठीक है, जरा सी बात ही तो है। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय ला।
3: कीवी सुनो तो। क्या मुसीबत है, कौन समझता है। कमला भाई माफ करना, मुझे आते आते बहुत देर हो गई। क्या करता, कोई स्कूटर ही नहीं मिला।
6: बैठ भी जाओ ना।
3: तुमने मुझे माफ कर दिया ना?
6: बिल्कुल सिले, बात बात पर माफी मांगने वाले लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से अजनबी किसी गाड़ी में इकट्ठे सफर कर रहे हों।
3: तो तुम्हें कैसे लोग अच्छे लगते हैं?
6: जो चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ जाए। लो टॉफी खाओ, बस आखिरी बची है। 2 मिनट देर से आते तो ये भी नहीं रहती।
3: अब तक कितनी टॉफियां खा चुकी हो?
6: पूरे 100 ग्राम लाई थी, तुम आए नहीं, इंतजार करती रही और इन टॉफियों के कागज उतार उतार कर इन रंग बिरंगे कागजों से बैले डांसेस बनाती रही। देखो कितनी ढेर सारी डांसेस बना डाली है।
3: देख रहा हूँ, अब क्या इनको नचाओगी?
6: किसी को नचाना आता होता तो बात ही क्या थी।
3: तो फिर इनका क्या होगा?
6: मुझे क्या मालूम, अकेले वक्त नहीं कट रहा था ना तो बना रही थी। अब तुम आ गए हो तो छोड़ो इन बातों को, मीठी टॉफी खाओ और कोई मीठी बात करो।
3: मीठी मीठी बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें।
6: 2 मीठे बोलों के सिवा जिंदगी में और रखा ही क्या?
3: बहुत कुछ है कमला, बहुत कुछ, तुमने कभी इससे आगे सोचा ही नहीं।
6: सोचने समझने के लिए तुम जो हो, क्या फैसला किया है?
3: किस बात का?
6: बाहर जाने का।
3: जा रहा हूँ।
6: बहुत जरूरी है जाना? क्यों?
3: कमला हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी रेस है जहाँ पिछड़े हुए घोड़े को लोग गधा कहते हैं।
6: लेकिन सभी घोड़े तो रेस में फर्स्ट नहीं आते।
3: लेकिन मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, 2 साल विदेश में लगाकर जब लौटूंगा तो देखना मेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी।
6: बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी,
3: मुझे यकीन है।
6: फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा।
3: जाहिर है।
6: फिर जितना होगा उस पर संतोष कर सकोगे और ज्यादा पानी

0: उसकी इच्छा क्या खत्म हो जाएगी?
1: अगर एम्बिशन खत्म हो जाए कमला, तो मैं समझता हूँ जीने का मकसद ही खत्म हो जाए।
0: और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे विक्रम, ये दौर कभी खत्म नहीं होगी।
1: लेकिन हौसला छोड़कर एक जगह बैठ जाना भी तो बुजदिली है।
0: मैं तुम्हें हौसला छोड़कर बैठ जाने को नहीं कहती, लेकिन डरती हूँ तेज चलते हुए पहियों के साथ भागते हुए कहीं तुम भी सिर्फ एक मशीन बनकर न रह जाओ। मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा।
1: इस वक्त तुम्हारा ऐसा सोचना शायद ठीक हो, लेकिन ऐसा छोटा सा घर पा लेने के बाद फिर जल्द ही वो घर बहुत छोटा सा नजर आने लगता है। तब कई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं और उस वक्त उनको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
1: अगर भरोसा न होता तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ के जाता? पर जरा सोचो तो, एक खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत कपड़े पहनकर क्या भद्दा हो जाता है? तुम मेरे लिए एक अनमोल हीरा हो, उसे मैं पीतल की अंगूठी में जड़ना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मुझे सोने की वो अंगूठी पैदा करनी है जिसमें जड़कर तुम्हें हर तरह की खुशी मिले और मुझे फख्र हो। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो कमल डार्लिंग।
0: डार्लिंग?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: तुमने मुझे डार्लिंग कहा विक्रम?
1: कोई पाप कर दिया मैंने?
0: भगवान के लिए मुझे कभी डार्लिंग न कहना।
1: क्या मैं तुमसे इतना दूर हूँ कि तुम्हें प्यार से पुकार भी नहीं सकता?
0: नहीं, ये प्यार नहीं।
1: तो
0: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उगताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
1: तुम्हें मेरी और कौन कौन सी बातों से बनावट की बू आती?
0: लो अब तुम बुरा मान गए। विक्की साहब, माफी चाहती हूँ। काश आपको एक ट्रॉफी और खिला सकती तो थोड़ी देर और मीठी बातें कर सकते।
1: चाहो तो वैसे भी वो मीठा हो सकता।
2: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
3: ओह नो,
2: ओह यस,
0: क्या सुनाऊं? अच्छा, ऐश किया है

0: ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ गई? तुम्ही को तो ढूंढ रहा था।
0: आई डोंट बिलीव यू।
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जान बूझ कर।
1: ओ, सुनो अनीब आओ।
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे कीवी। ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
2: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
1: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
2: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
1: जाहिर है पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
2: डोंट बी सो सीरियस, आओ बाहर चलो।

यादों की परछाइयां। अभी आपने सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा भाग सुना, निर्देशन दीनानाथ का। इस नाटक का तीसरा भाग हम

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म इश्क का ये प्यारा सा गीत। गीत हम प्ले करें उससे पहले कुछ एक संदेश।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
6: हेलो
7: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
8: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
9: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती PM सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर

0: पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: सुनत हूँ सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: फिल्म धड़कन का यह गीत अभी आपने सुना। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म थी धड़कन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। इस वक्त आपसे रूबरू आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। और अब अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म ड्रीम गर्ल से। ये गीत हम आपको सुनाएं उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या।

अलका याग्निक के गाये फिल्म गुप्त के इसी प्यारे से नगमे के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। न्यूज वन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार संध्या, उसके ठीक पश्चात ठीक 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस जरा सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
4: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
5: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
4: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक हेल्पलाइन नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने

0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemned terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said, now the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती, PM सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

जगजीत सिंह की गाई मीठी सी गजल के साथ ही गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल अब समाप्त होता है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। हम फोन कॉल्स का को रिसीव करने का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ एक संदेश, लेकिन बता दें कि हमारे फ़ोन लाइन 7376804090 ये खुली हुई है और आप कॉल कर सकते हैं, अपनी पसंद के गीत भी सुन सकते हैं। फिलहाल छोटा सा विराम और संदेशों के बाद हम हाजिर हो रहे हैं आपकी फ़ोन कॉल को रिसीव करने के लिए।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
8: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
11: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
10: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
11: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जी हाँ, कार्यक्रम सजू फोन इन हेलो अयोध्या शुरू हो चुका है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और हम बात करते हैं, आइए सबसे पहले प्रोग्राम जो चल रहा है उसके पहले कॉलर से। जी हाँ, हेलो, प्लीज अपना नाम बताएं। हेलो,
2: इश्तियाक अहमद बलरामपुर से।
1: हाँ इश्तियाक जी, क्या करते हैं?
2: खाना का काम करते हैं हम, शादी वादी का बुकिंग।
1: जी आपने बलरामपुर से कॉल किया है?
2: हाँ।
1: कौन कौन है परिवार में इश्तियाक जी?
2: बहुत परिवार है, बहू है, बेटी है, बेटा है।
1: हाँ हाँ, आज हाँ। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में?
2: यही गूंज उठी सहनाई का।
1: गूंज उठी सहनाई का, ठीक
2: हाँ।
1: है।
2: खिलौना है टूट गया।
1: अच्छा जी, तो इस समय वहाँ बलरामपुर में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है?
2: नहीं, रात में हल्का फुल्का बारिश हुआ था।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: बहुत हल्का बारिश, गर्म बहुत ज्यादा पड़ रहा है।
1: गर्मी हाँ? बहुत ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा हाँ। अपने आप को बचा कर रखिएगा, है ना, क्योंकि
2: क्या करेंगे सर जी, अब आग का तो हमारा आग में काम है, आग का काम।
1: हाँ, सही बात है
2: हाँ?
1: जी बिल्कुल,
2: क्या किया जाएगा
1: है?
2: नहीं करेंगे तो बगैर किए कुछ मिलने वाला नहीं है।
1: हाँ
2: है?
1: काम तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर जीवन है तो जीवन में काम तो करना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है सबको मन का काम मिले, लेकिन जो मिला है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, है ना, वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा।
2: गर्मी हो या ठंडी हो, मजदूरी करेंगे तभी तो मिलेगा खाने के।
1: जी बिल्कुल, देखिए हमने आपसे वादा किया था, तो गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में हम भेज रहे हैं आप तक। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।
2: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या में अभी आपने सुना था लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गूंज उठी शहनाई का प्यारा सा गीत। कार्यक्रम लगातार जारी है और हम आइए एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए प्लीज। हेलो, जी अपना नाम बताएं। हेलो, हाँ कहाँ से बोल रही हैं? आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। हाँ कहाँ से आपने कॉल लगाया है बता सकती हैं? हम माफ़ी चाहते हैं कि आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो गई है। लाइन में कुछ डिस्टरबेंस के कारण पूरी तरह आवाज़ आपकी सुनाई नहीं दे पा रही थी। फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं अपने अगले कॉलर का। और गाना देखिए आपने बहुत बढ़िया सा सुना था। देखिए एक और कॉलर आ चुके हैं, आइए बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी अपना नाम बताएं।
1: समीर नाम बोल रहा
0: है। समीर भैया कहाँ से बोल रहे हैं?
1: फैजाबाद।
0: फैजाबाद अयोध्या से आप बोल रहे हैं। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में?
1: गाना दिलवाले का सुना दीजिए। दिलवाले का।
0: दिलवाले का क्या करते हैं समीर भाई?
1: काम करते हैं सरदार।
0: अच्छा किस चीज का काम करते हैं? हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ समीर भाई किस चीज का कौन सा काम करते हैं आप?
1: हम कंपनी में करते हैं काम।
0: अच्छा अच्छा, और परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है।
0: अच्छा सारे लोग मिलकर के प्रोग्राम सुन रहे हैं या आप अकेले हैं?
1: सारे लोग बैठे हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अपने मम्मी पापा को हमारा नमस्कार कहिएगा। और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म दिलवाले का ये प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं आप तक। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जी हाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम। हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, प्लीज अपना नाम बताएं। हेलो,
3: नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
3: पांडे बोल रहा हूँ
2: जी। कहाँ से बोल रहे हैं पांडे जी?
3: परशुरामपुर गाँव का नाम जुड़ेपुर बस्ती से बोल रहे हैं।
2: परशुरामपुर बस्ती से बोल रहे हैं और गाना जी जुड़ईपुर जी। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में?
3: राजा फिल्म सुना दीजिए, भाई भाई में अक्सर होता।
2: राजा फिल्म का गीत आपको सुनना है। और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं?
3: मैं तो लुधियाना में रहता हूँ, मोबाइल में सुनता हूँ आपका प्रोग्राम बराबर।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम जी
3: ड्यूटी करके आया था, फिर कल बात करते हैं सर।
2: अच्छा तो जी जी बताएं। तो ड्यूटी से आप वापस आए हैं तो आपने रेडियो ऑन किया और प्रोग्राम चल रहा था, आपने कॉल लगा दिया।
3: मतलब मोबाइल में एफएम ऑन करते हैं।
2: हाँ हाँ जी जी, ये सुविधा बहुत अच्छी आ गई है ना कि रेडियो मोबाइल में जो है बज रहा है, ऑन किया बस कार्यक्रम शुरू हो गया। तो राजा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
3: सर? भाई भाई में अक्सर ये होता है।
2: भाई भाई में अक्सर ये होता है, तो ये तो गाना हमको इसमें दिखाई नहीं दे रहा हमारे कंप्यूटर जी के पास। और कोई गीत बताएं?
3: कोई फिर अपना जात सुना दीजिए कोई।
2: चलिए ठीक है। और ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म राजा का आप तक पहुंच रहा है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जी हाँ, प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजा से। और आइए एक और कॉलर से बात करते हैं। जी हाँ नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए प्लीज।
1: हाँ, 6 बजे तक रेडियो सोता था, बस स्टैंड बंडा वेली चले। तुम्हारे को चाय वाली बोल रहे सर, कहते हो
0: आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: बस भगवान की कृपा है, आप लोग कृपा है।
0: हाँ, गाना कौन सा सुनेंगे प्रोग्राम में? नदिया के पार फिल्म का गाना। आप तो रेडियो आपने अपनी दुकान पर लगा रखा है परमानेंट?
1: हाँ परमानेंट रहते, बहुत पुराने सोता भी
0: है। वो आपकी बातचीत से, बात के अंदाज से लग रहा है कि आप वास्तव में बिल्कुल बहुत अच्छे सोता हैं और रेगुलर सोता हैं। हमारे यहाँ का प्रसारण बहुत बढ़िया तरीके से पहुँच रहा होगा ना?
1: हाँ अच्छा सुनाई देता है, मोबाइल ऐप पे अच्छा देता है सुनाई।
0: हाँ, ऐप की सुविधा बहुत अच्छी है ना? ऐप की सुविधा बहुत अच्छी है। तो कौन कौन इस समय है आपके साथ कार्यक्रम सुन रहा है? ये
1: बस हमारे वो बाल बच्चे भी हैं।
0: हाँ,
1: मैं सब सुन रहे हैं कार्यक्रम।
0: कौन कौन है परिवार में?
1: हमारे बिल्कुल 2 बच्ची हैं।
0: हाँ जी,
1: 2 बच्ची, एक बच्चा है।
0: हाँ हाँ,
1: दीपेश, एक वैशाली, एक वैष्णवी है।
0: क्या बात है। तो लीजिए, आपकी फरमाइश जो है कार्यक्रम में इस नदिया के पार फिल्म के गाने को सुनवाने की, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में, हम भेज रहे हैं आप तक। एंजॉय कीजिए। और बातचीत आपने की हमसे, आपको हमको कॉल किया, बहुत बहुत थैंक्स।

0: जी हाँ, कार्यक्रम में एक और कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, प्लीज अपना नाम बताएं। हाँ नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? अयोध्या धर्मपुर से। गाना कौन सा सुनेंगे जी? आप बहुत हिल रहे हैं, आपकी आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है। आप गाना बताइए, गाने। हेलो, हाँ समझ में आया नहीं सर।
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, फिलहाल आपकी फरमाइश हमारी समझ में आई नहीं, और जिसकी वजह से हम आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने चूंकि कॉल किया है इसलिए आपको हम एक प्यारा सा गीत सुनवाने जा रहे हैं, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। न्यूज ऑन आईआर एप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। कृपया कार्यक्रम की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिम्नास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिम्नास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
4: धन्यवाद।
3: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
4: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
4: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, हाँ। तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है
3: जी।
4: कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
3: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
4: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
3: अच्छा।
4: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
3: जी।
4: और मेरे फादर को नहीं पता था, मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।

0: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती जरूरी होती हैं। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
1: जी,
0: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
1: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कॉम्पिटिशन था।
0: अच्छा।
1: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
0: जी
1: उस टाइम पे जूनियर की थी।
0: अच्छा।
1: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
0: अच्छा।
1: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है

0: था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
1: अच्छा।
0: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
1: जी।
0: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
1: अच्छा।
0: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
1: जी।
0: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिमनास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
1: अच्छा।
0: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता है।
1: बिल्कुल।
0: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
0: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे।
1: अच्छा।
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए, आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा, और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता।
1: अच्छा।
0: आपको वहां पे ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता
1: जी।
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था, वो मेरा एक सैक्रिफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा मैंने बोला, उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टीजियस था, क्योंकि जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूँ, तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रही?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं
1: जी,
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा
1: जी,
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे।
1: क्या बात।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया, मुझे इतना क्राउड दिखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था। मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे
1: जी।
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है, तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे, एकेडमिक्स

0: आपकी एजुकेशन थी वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
1: जिमनास्टिक्स में जैसे मैंने बताया मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था।
0: अच्छा।
1: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी। जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला टूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में।
0: अच्छा।
1: उसको खेलने के बाद क्या होता है अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है। और जिमनास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है।
0: अच्छा।
1: शाम को भी मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होते थे। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था।
0: अच्छा।
1: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है वहां के प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला था।
0: उतनी पॉपुलरिटी नहीं थी,
1: पॉपुलरिटी नहीं थी। लेकिन जब मैं खेल के आया वहां से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
0: कुल मिला के तालमेल बन गया,
1: तालमेल बन गया।
0: आशीष जी एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
1: जो यंग बच्चे हैं स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के बच्चे उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
0: अच्छा।
1: अभी गवर्नमेंट ने अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है।
0: जी मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं।
1: हाँ,
0: तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं ये भी मैं पूछना चाहूंगा।
1: मैं उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा जो मेरा ऑब्जर्व रहा है बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
0: अच्छा।
1: देखिए क्या होता है बच्चा छोटा है 4 साल का बच्चा उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है। जिम्नास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
0: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है।
1: जरूर।
0: चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी इंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
1: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना खड़े होना
0: जी।
1: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है सफलता है तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
0: जी।
1: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था
0: जी।
1: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा हूं चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा
0: निश्चित रूप से। आशीष जी आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो एक खेल है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ

0: स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
1: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
0: जी।
1: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ। प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
0: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था, उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है, उसको किस रूप में देखते हैं?
1: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपनी लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ, वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
0: जी। हैमर थ्रो जो खेल है, इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना, और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है, वो क्या है?
1: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
0: जी।
1: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
0: जी।
1: और मेरे गुरु भी, जिनका आप नाम ले रहे, मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बढ़िया हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
0: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चल रही हैं, उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है, चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
1: हैमर थ्रो जो है, ये यूरोपियन गेम्स है
0: जी।
1: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय, कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं, वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको ज्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन
0: जी।
1: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना, उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है, वो अगर इसका चुनाव करता है, तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मजा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
1: तकनीक का तो इसमें, इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं, उसका यूज करते हैं, तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज नहीं करेंगे, तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं, वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें, तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं, उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका?
1: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है, तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है
0: जी।
1: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है।

0: को, लेकिन आप हैमर का जहां तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था,
1: जी जी जी,
0: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो वैसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
1: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है
0: जी।
1: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चुनौतियां तो बहुत हैं
1: जी।
0: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है, तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा स्पोर्ट्स को करने के लिए
1: जी। चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में है, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका
1: जी,
0: यूरोपियन थ्रोअर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब
1: जी,
0: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनके ट्रेनिंग भी, कोच थर्ड था और उनके ट्रेनिंग फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
1: और कोई अनुभव?
0: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं
1: जी जी।
0: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां पे हम अपना बेस्ट करके गए, कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहां बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहां हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहां पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं, खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है
1: जी। चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीजों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
0: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है
1: जी,
0: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है
1: जी।
0: आज सफल हुए हैं, कल नकद सफल होंगे ही, हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
1: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
0: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा
1: जी।
0: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पे उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था
1: जी,
0: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
1: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
1: जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
0: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
1: जी,
0: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को
1: जी,
0: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है
1: जी,
0: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी
1: जी। भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है
1: जी।
0: मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
1: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।

0: आप सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: खेल दर्पण।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अभी आपने सुना एक कार्यक्रम राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष।

0: सखी सहेली दिन में 3 बजे। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विद भारती केंद्र मुंबई से न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने

के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।